0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आतुर मसाला।
4: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
5: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
6: The eminent juries who are here and that itself speaks

0: Hussein, asserting that there is no need to fear the idea of a Hindu Rashtra or a Hindu nation. He says that Muslims and Christians have nothing to fear in India, urging people to embrace the tradition of their ancestors. We had Congress leader earlier, Salman Khurshid, questioning those remarks of Baba Ramdev, saying that the yoga guru should explain the context behind his statements. Khurshid asked that if everyone is considered Sanatani, then why attempts are being made to create divisions, adding that such remarks require a clear explanation.
1: हमारे मजा वाला को हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है. हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है. हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था. डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ. अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता. अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो. तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो.
2: बाबा रामदेव ने सनातन धर्म की बात करते हुए मुसलमानों के ताल्लुक से जो बात कही कि मुसलमान भी सनातनी है, उनके पूर्वज भी सनातनी थे. दरअसल ये बाहर से आए हुए लोग हैं. असल इस मुल्क की असल कौम तो द्राविड़ियन है और बाबा रामदेव ने जो तंज कहा है मुसलमानों पर कि आप दाढ़ी रखें, मूछें कटाएं, यकीनन हम इस्लाम को फॉलो करते हैं. बाबा रामदेव जैसे मक्कार और नफरती आदमी को हम टोटल रिजेक्ट करते हैं.
3: घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन पूछ तो उनसे लीजिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे ही पूछ लेते, बाबा रामदेव से पूछ लेते कि उन्होंने ये बात कही है ना. मैं कैसे बताऊं कि उनके मन में क्या है और क्या किस बात, किस परिप्रेक्ष्य में वो इस बात को कह रहे हैं. अरे सब सनातनी थे तो फिर यहाँ पर इतने दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? सबको सनातनी मान लो ना, दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? कभी इधर कभी उधर की बात क्यों होती है? ये एक सवाल है ना. तो वो पहले वो खुद तय कर लें पहले वो क्या हैं और वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर औरों से बात करें.
0: Let's switch tracks now to Tamil Nadu, as the Chief Minister is set to visit Perambur for his first trip after assuming office, where he will be launching key welfare initiatives and local infrastructure projects as well. The Chief Minister will inaugurate this new MLA office in the area, launching a fresh ration card distribution drive, and also inspect the newly constructed bus depot during his first visit to the constituency after taking charge. As his first visit to his home constituency after becoming the Chief Minister, it strengthens his connect with his core voters, showcasing his hands-on governance style, highlighting a tech-enabled administration and reinforcing the government's strong focus on urban welfare. Now, staying with news from Tamil Nadu, is the BJP Chief K. Annamalai. This is the former BJP Chief Annamalai who has signalled his long-term political ambitions, setting his sights on the elections coming up in 2031 in Tamil Nadu. This is his newly launched platform, We the Leaders, addressing supporters. He says the movement would transform into a political party at the right time and promises to offer healthy politics, better governance, drawing a parallel with actor turned politician Vijay's emergence, and expressed confidence that they would usher in another change in 2031, launching a sharp attack and calling themselves an alternative for the DMK.
4: மாற்றம் வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள், அது உடனடியாக வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள். இந்த 39 வயசு கீழே இருக்கக்கூடியவங்க 2026 தமிழகத்தில் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினாங்க. 2031 மற்றொரு மிகப்பெரிய ஆட்சி மாற்றத்தை அவங்க ஏற்படுத்த தான் போறாங்க, அதில் யாருக்கும் எந்த விதமான சந்தேகம் வேண்டாம்.
0: So we have, of course, Annamalai there clarifying his decision to quit the BJP, saying the move was driven by his desire to serve people better. Let's listen in to Annamalai.
4: ஒரு கட்சியிலிருந்து வெளியே எதற்காக வருகின்றோம்? அந்த கட்சியின் மீது கோபம் ஒரு பக்கம், ஆமாம். அந்த கோபத்தை எப்படி காட்டணும்.

0: सुबह
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: The fact that there is now suddenly a raging debate with regards to ethanol, why is it that it's happening now?
3: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out, that this is not something we've done suddenly, that E20 has been around for at least almost 2 years, that E15 has been around for 3.5 years. And by the way, in the last 18 months or 24 months, there have been no complaints.
4: Launch control, 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
6: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
5: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
8: 5 आवर्स टू गो फॉर ऑल ऑफ डीकेएस ड्रीम्स टू कम थ्रू आई एम गोना ट्राई एंड गेट मोर इनटू द क्राउड्स हियर इज द पिक्चर सिद्धरमैया एनडीटीवी स्टैंड्स कंप्लीटली एंगेज्ड विद कर्नाटका
9: हाई रेट चेक द ऑडियो हाई रेट चेक द ऑडियो
8: लेट्स डू इट लेट्स डू इट लेट्स स्टार्ट
10: ब्रेकिंग स्टोरी वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट
8: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर व्हाट इज इन योर लेटर यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स
11: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
12: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
13: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
14: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
15: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
16: Buy now.
17: Sell immediately.
16: Hold it, boss.
17: Buy now.
16: Sell.
1: Welcome back. Now let's get you the latest as far as the Ram Mandir donation theft case is concerned. That's headed for a crucial legal and political showdown. The Supreme Court is set to hear pleas seeking a court-monitored investigation. Meanwhile, sources tell NDTV that the investigation has uncovered key findings. The CCTV footage is said to corroborate the accused confessional statements that have been made. And the Congress, they're demanding that the Prime Minister and the Home Minister respond in Parliament in the same regard. The Aam Aadmi Party has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session. Meanwhile, the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Mandir issue ahead of the elections coming up in the state of Uttar Pradesh.
18: Ram Mandir ko hum aap usi nazar se dekhte hain jis nazar se Bharat ka 100 crore sanatani dekhta hai. Hamari aastha ka, virat aastha ka, hamare aaradhya Prabhu Shri Ram ka bhavya mandir विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज बना जिस राम मंदिर के लिए 500 बार हमले हुए हम पर न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देने का काम किया कितनी लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी रही लगातार वो आहत की जा रही थी कुचल ली जा रही थी उनके ऊपर गोलियां चल रही थी लाठियां चलवाई जा रही थी उसके बाद भी भारत का सनातनी और राम भक्त इसे माने नहीं देश का सौभाग्य कि भारत को एक बड़ा नेतृत्व मजबूत नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के रूप में मिला
19: देखिए राम मंदिर ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उससे देशवासियों का सिर नीचा हुआ है आस्था के साथ मजाक उड़ाया है आरएसएस के पदाधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में चूंकि वो ट्रस्ट का गठन हुआ था प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके उद्घाटन किया था और जिस तरह से चंदे के पैसा जो लोग आस्था स्वरूप जाके 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया चढ़ाते थे प्रभु राम के चरणों में उस पैसे के साथ भी इस तरह का धोखाधड़ी होना इस तरह का ये दिखना कि पैसे चोरी हो गए और किसी पे कार्रवाई अब तक नहीं होना ये घोर आश्चर्य का विषय है
1: And stick with news of Uttar Pradesh. And now the state is set to get a major infrastructural boost with the inauguration of the Lucknow-Kanpur Expressway that's going to be taking place today. We have Rajnath Singh and Nitin Gadkari there alongside the Chief Minister who will be dedicating this new corridor to the public. This is a 63-kilometer stretch, six-lane expressway that's expected to slash travel time between Lucknow and Kanpur from 2 to 3 hours to under an hour, while improving connectivity to the region's industrial belt and easing congestion on the existing highways. Around 46,000 trees will also be planted along the route, making it a key project aimed at boosting connectivity, logistics and economic growth in the state. My colleague Ranveer gets us the details.
0: Lucknow is UP's capital, while Kanpur is considered as economic capital of Uttar Pradesh. So, the distance between both these cities is around 80 kilometers, and if we talk about the road connectivity, then a national highway is there, but the national highway was very congested because of hundreds and thousands of trucks as well as cars, because Kanpur not only gives thousands of trucks because of many industries, but also the trucks coming from Bundelkhand area also passes through Kanpur. And that's why after completion of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity will be shortened as well as this connectivity will be easier. So obviously after the inauguration of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity between both the cities will be easier as well as comfortable. Kab ye expressway shuru hua tha aur kitne din mein bankar complete hua?
17: Ye to actually November 2023 mein hamara shuru kiya tha, and almost 3 years mein bola complete kar diya. Total 45 kilometer hai, green expressway hai. Ne kafi challenge raha kyunki pura green field tha. एक्सेस ठीक ठाक से नहीं था, पूरा एक्सेस हमको बनाना पड़ा, तो इसलिए
0: एक्सप्रेसवे की वैसे लंबाई 63 किलोमीटर है, जिसमें 45 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड है और बाकी एलिवेटेड पार्ट है जो लखनऊ की तरफ से आ रहा है.
17: एलिवेटेड पार्ट है वो पैकेज वन है, और ये 45 किलोमीटर जो पैकेज टू है, ये एक्सक्लूसिवली ग्रीन एक्सप्रेस वे है. वो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पैकेज वन है, वो 17.5 किलोमीटर है, टोटल 63 किलोमीटर है.
0: अच्छा, अगर सहूलियत के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर क्या क्या ऐसी खासियत है जो किसी भी गाड़ी वाले को ज़्यादा अच्छा फील कराएगी?
17: सहूलियत मतलब जो गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा ATMS फैसिलिटी है, कैमरा लगा हुआ है, VMS वगैरह लगा हुआ है, स्पीडोमीटर वगैरह लगा हुआ है. कोई रॉन्ग साइड में पार्किंग कर देगा, रॉन्ग रूट में जाएगा, तो उसके लिए हम लोग कैमरा पूरा लगा हुआ है, कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, 24 आवर्स कंट्रोल सेंटर बना हुआ है. किधर भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह होगा तो विदिन जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के अंदर जो 10 to 15 मिनट्स, उसके अंदर हमारा एम्बुलेंस पहुँच जाएगा, पेट्रोलिंग व्हीकल पहुँच जाएगा. तो ये सब हेल्प हम लोग 24 आवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं.
1: All eyes on that expressway that's going to be inaugurated today. For now, slipping into a very short break.

0: ऐसी भी टोपियों हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो।
1: बाबा रामदेव ने सनातन धर्म की बात करते हुए मुसलमानों के ताल्लुक से जो बात कही कि मुसलमान भी सनातनी है, उनके पूर्वज भी सनातनी थे। दरअसल ये बाहर से आए हुए लोग हैं, असल इस मुल्क की असल कौम तो द्राविड़ियन है। और बाबा रामदेव ने जो तंज कहा है मुसलमानों पर कि आप दाढ़ी रखे, मूछें कटाएं, यकीनन हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। बाबा रामदेव जैसे मक्कार और नफरती आदमी को हम टोटल रिजेक्ट करते हैं।
2: घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन पूछ तो उनसे लीजिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे ही पूछ लेते, बाबा रामदेव से पूछ लेते कि उन्होंने ये बात कही है ना, मैं कैसे बताऊं कि उनके मन में क्या है और क्या किस बात, किस परिप्रेक्ष्य में वो इस बात को कह रहे हैं। अरे सब सनातनी थे तो फिर यहाँ पर इतने दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? सबको सनातनी मान लो ना, दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? कभी इधर कभी उधर की बात क्यों होती है? ये एक सवाल है ना, तो वो पहले वो खुद तय कर लें पहले वो क्या हैं और वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर औरों से बात करें।
3: मैं पूरी तरीके से उसकी निंदा करता हूँ। पहले बात तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत सर्वधर्म संभाव एक सेकुलर कंट्री है और इसमें संविधान ने सबको इस बात की इजाज़त दी है कि अपने धर्म के मुताबिक वो कपड़ा पहने, अपने धर्म के मुताबिक धर्म का पालन करें, रीति रिवाज करें। तो इस प्रकार का बयान जो है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। ये जो बयान है ये अहमकाना बयान है।
4: ऑलराइट, ऑन दैट नोट लेट्स स्विच ट्रैक्स नाउ। उत्तर प्रदेश's टू बिगेस्ट सिटीज आर सेट टू come barely 40 minutes apart by road. The Lucknow-Kanpur Expressway is set to open to traffic today, and Defence Minister Rajnath Singh, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari, as well as the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, they will jointly inaugurate the 63-kilometre stretch. This six-lane expressway is expected to slash travel time between Lucknow and Kanpur from 2 to 3 hours to under 1 hour, while also improving connectivity to the region's industrial belt and easing congestions on existing highways. Around 46,000 trees will also be planted along the route, we're told, making it a key project aimed at boosting connectivity, logistics, as well as economic growth in Uttar Pradesh. My colleague Ranveer has sent us these ground reports. Take a look.
5: Lucknow is UP's capital, while Kanpur is considered as economic capital of Uttar Pradesh. So the distance between both these cities is around 80 kilometers. And if we talk about the road connectivity, then a national highway is there. But the national highway was very congested because of hundreds and thousands of trucks as well as cars, because Kanpur not only gives thousands of trucks because of many industries, but also the trucks coming from Bundelkhand area also passes through Kanpur. And that's why after completion of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity will be shortened as well as this connectivity will be easier. So obviously after the inauguration of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity between both the cities will be easier as well as comfortable. कब ये एक्सप्रेस वे शुरू हुआ था और कितने दिन में बनकर कंप्लीट हुआ?
6: ये तो एक्चुअली नवंबर 2023 में हमारा शुरू किया था एंड ऑलमोस्ट 3 ईयर्स में पूरा कंप्लीट कर दिया। टोटल 45 किलोमीटर है, ग्रीन एक्सप्रेस वे है। काफ़ी चैलेंज रहा क्योंकि पूरा ग्रीन फील्ड था, एक्सेस ठीक ठाक से नहीं था, पूरा एक्सेस हमको बनाना पड़ा। तो इसलिए
5: एक्सप्रेसवे की वैसे लंबाई 63 किलोमीटर्स है, जिसमें 45 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड है और बाकी एलिवेटेड पार्ट है जो लखनऊ की तरफ से आ रहा है।
6: एलिवेटेड पार्ट है वो पैकेज वन है और ये 45 किलोमीटर जो पैकेज टू है, ये एक्सक्लूसिवली ग्रीन एक्सप्रेस वे है। वो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पैकेज वन है, वो 17.5 किलोमीटर है, टोटल 63 किलोमीटर है।
5: अच्छा, अगर सहूलियत के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर क्या क्या ऐसी खासियत है जो किसी भी गाड़ी वाले को ज़्यादा अच्छा फील कराएगी?
6: सहूलियत मतलब जो गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा ATMS फैसिलिटी है, कैमरा लगा हुआ है, VMS वगैरह लगा हुआ है, स्पीडोमीटर वगैरह लगा हुआ है। कोई रॉन्ग साइड में पार्किंग कर देगा, रॉन्ग रूट में जाएगा तो उसके लिए हम लोग कैमरा पूरा लगा हुआ है, कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, 24 आवर्स कंट्रोल सेंटर बना हुआ है। किधर भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह होगा तो विद इन जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के अंदर जो

0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
2: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
3: शो ऑन NDTV 24/7. आई एम परमेश्वर बावा. वी गॉट एन एक्शन पैक बुलेटिन लाइंड अप फॉर यू दिस मॉर्निंग. लेट्स बिगिन विद द टॉप हेडलाइंस यू नीड टू नो. इन हिज फर्स्ट ऑफिशियल कंस्टिट्यूएंसी विजिट एज चीफ मिनिस्टर, विजय इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च अ राशन कार्ड रोल आउट फ्रॉम पेरंबलूर टुडे. Former BJP Tamil Nadu President K. Annamalai has pitched a secular political vision for his newly launched movement.

0: Latest with you, Deepak. Thanks so much for joining us. Officials on ground in Karnataka are warning that despite a slight easing in the rainfall deficit, many regions, as Deepak Bopanna has highlighted, remain under severe water stress. All right. In other crucial news, the Ram Mandir donation theft case is now headed for a crucial legal and political showdown. The Supreme Court is set to hear pleas seeking a court-monitored investigation. Meanwhile, sources are telling NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accused's confessional statements. The Congress, meanwhile, has demanded that Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah should respond in Parliament. As far as other political reactions are concerned, the Aam Aadmi Party has said it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session. Meanwhile, the BJP is accusing the opposition of politicizing the Ram temple issue ahead of the Uttar Pradesh elections.
1: अनि संदेह पूरे देश में नहीं अपितु पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निसंदेह उसको सजा होगी वो सजा
2: मंदिर को हम आप उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से भारत का 100 करोड़ सनातनी देखता है हमारी आस्था का विराट आस्था का हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज बना जिस राम मंदिर के लिए 500 बार हमले हुए हम पर न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देने का काम किया कितनी लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी रही लगातार वो आहत की जा रही थी कुचल ली जा रही थी उनके ऊपर गोलियां चल रही थी लाठियां चलवाई जा रही थी उसके बाद भी भारत का सनातनी और राम भक्त इसे माने नहीं देश का सौभाग्य कि भारत को एक बड़ा नेतृत्व मजबूत नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के रूप में मिला
3: ये राम मंदिर ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उससे देशवासियों का सिर नीचा हुआ है आस्था के साथ मजाक उड़ाया है आरएसएस के पदाधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में चूंकि वो ट्रस्ट का गठन हुआ था प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके उद्घाटन किया था और जिस तरह से चंदे का पैसा जो लोग आस्था स्वरूप जाके 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया चढ़ाते थे प्रभु राम के चरणों में उस पैसे के साथ भी इस तरह का धोखाधड़ी होना इस तरह का ये दिखना कि पैसे चोरी हो गए और किसी पे कार्रवाई अब तक नहीं होना ये घोर आश्चर्य का विषय है
0: Well, let's switch tracks now. A political row has erupted over Yoga Guru Baba Ramdev's remarks on Hindu Rashtra and shared ancestry. The Yoga Guru said that while religions may differ, everyone's ancestors are the same and asserted that there is no need to fear the idea of a Hindu Rashtra. He also said Muslims and Christians have nothing to fear in India and urged people to embrace the traditions of their ancestors. But the Congress was quick to react, with Salman Khurshid questioning Baba Ramdev's remarks, saying the Yoga Guru should explain the context behind his statements. Mr. Khurshid asked that if everyone is considered Sanatani, then why are attempts being made to create divisions, adding that such remarks require a clear explanation.
4: हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है यहां पर भी लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है ये सामने भी लिखा हुआ है मार गेट में भी यही लिखा हुआ था डरते क्यों भाई कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं पूर्वज हैं अपने ऋषि मुनि है, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो।
5: बाबा रामदेव ने सनातन धर्म की बात करते हुए मुसलमानों के ताल्लुक से जो बात कही कि मुसलमान भी सनातनी है, उनके पूर्वज भी सनातनी थे। दरअसल ये बाहर से आए हुए लोग हैं, असल इस मुल्क की असल कौम तो द्राविड़ियन है। और बाबा रामदेव ने जो तंज कहा है मुसलमानों पर कि आप दाढ़ी रखें, मूछें कटाएं, यकीनन हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। बाबा रामदेव जैसे मक्कार और नफरती आदमी को हम टोटल रिजेक्ट करते हैं।
6: घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन पूछ तो उनसे लीजिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे ही पूछ लेते, बाबा रामदेव से पूछ लेते कि उन्होंने ये बात कही है ना। मैं कैसे बताऊं कि उनके मन में क्या है और क्या किस बात, किस परिप्रेक्ष्य में वो इस बात को कहें। अरे सब सनातनी थे तो फिर यहाँ पर इतने दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? सबको सनातनी मान लो ना, दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? कभी इधर कभी उधर की बात क्यों होती है? ये एक सवाल है ना। तो वो पहले वो खुद तय कर लें पहले वो क्या हैं और वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर औरों से बात करें।
7: मैं पूरी तरीके से इसकी निंदा करता हूँ। पहले बात तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत सर्वधर्म संभाव एक सेकुलर कंट्री है और इसमें संविधान ने सबको इस बात की इजाज़त दी है कि अपने धर्म के मुताबिक वो कपड़ा पहने, अपने धर्म के मुताबिक धर्म का पालन करें, रीति रिवाज करें। तो इस प्रकार का बयान जो है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। ये जो बयान है ये अहमकाना बयान है।
0: The other headlines we're tracking: Uttar Pradesh's two biggest cities are set to come barely 40 minutes apart by road. The Lucknow-Kanpur Expressway is set to open to traffic today, and Defence Minister Rajnath Singh, Road and Transport and Highways Minister Nitin Gadkari and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, they will jointly inaugurate the 63-kilometer stretch. The six-lane expressway is expected to slash travel time between Lucknow and Kanpur from 2 to 3 hours to under 1 hour, while also improving connectivity to the region's industrial belt and easing congestion on existing highways. We are told that around 46,000 trees will also be planted along the route, making it a project that's aimed at boosting connectivity, logistics and, of course, economic growth as far as the state of Uttar Pradesh is concerned. Ranveer has sent us a ground report. Take a look.
8: Lucknow is UP's capital, while Kanpur is considered as economic capital of Uttar Pradesh. So the distance between both these cities is around 80 kilometers. And if we talk about the road connectivity, then a national highway is there. But the national highway was very congested because of hundreds and thousands of trucks as well as cars, because Kanpur not only gives thousands of trucks because of many industries, but also the trucks coming from Bundelkhand area also passes through Kanpur. And that's why after completion of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity will be shortened as well as this connectivity will be easier. So obviously after the inauguration of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity between both the cities will be easier as well as comfortable. कब ये एक्सप्रेस वे शुरू हुआ था और कितने दिन में बनकर कंप्लीट हुआ?
9: ये तो एक्चुअली नवंबर 2023 में हमारा शुरू किया था एंड ऑलमोस्ट 3 ईयर्स में बोला कंप्लीट कर दिया। टोटल 45 किलोमीटर है, ग्रीन एक्सप्रेस वे है। काफ़ी चैलेंज रहा क्योंकि पूरा ग्रीन फील्ड था, एक्सेस ठीक ठाक से नहीं था, पूरा एक्सेस हमको बनाना पड़ा। तो इसलिए
8: एक्सप्रेसवे की वैसे लंबाई 63 किलोमीटर है, जिसमें 45 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड है और बाकी एलिवेटेड पार्ट है जो लखनऊ की तरफ से आ रहा है।
9: एलिवेटेड पार्ट है वो पैकेज वन है और ये 45 किलोमीटर जो पैकेज टू है, ये एक्सक्लूसिवली ग्रीन एक्सप्रेस वे है। वो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पैकेज वन है, वो 17.5 किलोमीटर है, टोटल 63 किलोमीटर है।
8: अच्छा, अगर सहूलियत के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर क्या क्या ऐसी खासियत है जो किसी भी गाड़ी वाले को ज़्यादा अच्छा फील कराएगी?
9: सहूलियत मतलब जो गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा ATMS फैसिलिटी है, कैमरा लगा हुआ है, VMS वगैरह लगा हुआ है, स्पीडोमीटर वगैरह लगा हुआ है। कोई रॉन्ग साइड में पार्किंग कर देगा, रॉन्ग रूट में जाएगा तो उसके लिए हम लोग
10: कैमरा पूरा लगा हुआ है, कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, 24 आवर्स कंट्रोल सेंटर बना हुआ है। किधर भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह होगा तो विदिन जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के अंदर जो 10 to 15 मिनट्स उसके अंदर हमारा एम्बुलेंस पहुँच जाएगा, पेट्रोलिंग व्हीकल पहुँच जाएगा, तो ये सब हेल्प हम लोग 24 आवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं।
0: Well, Samajwadi Party President Akhilesh Yadav had claimed that this 4,700 crore rupee expressway, which was scheduled to be inaugurated just in a day as in when he made this comment, had caved in before its opening. But the National Highways Authority of India has categorically rejected that claim. Quick break now. Back in a moment with the latest updates for you.

0: Not the first time that BJP has made these allegations of as far as Rahul Gandhi's foreign trips are concerned. Congress, they're saying that he was out of the country for about 3 weeks. He was in Europe and now he's going to be back today.
1: Yes, we are waiting for Congress's official words, because Congress have not reacted officially on BJP's allegations, but Congress sources have told NDTV that Rahul was on vacation of 3 weeks and he is returning today. His flight was supposed to land today morning itself. Whether the flight has landed or not, it is not clear, but nevertheless, he is returning today. This is very clear. And he was on a tour of Europe, sources have also told us. So. But each time Rahul Gandhi goes on vacation or he is missing for a few days, then BJP gets a chance to question Rahul Gandhi's absence and to corner Congress party on this issue. And BJP tries to make a narrative that Rahul Gandhi is not a serious politician and he is also always in a vacation mode. But Congress has not reacted yet on this allegation of BJP, but Congress sources have told us that Rahul was on a personal visit of Europe and he is going to return today. And after that, on 17th July, he will address a students' convention in Dehradun on the issue of paper leak. Congress is running a campaign to demand resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. On that issue, Rahul Gandhi launched that campaign in Kota in Rajasthan last month on 17th June, and after 1 month he will visit Dehradun on the same issue and address the students' convention. And also Rahul Gandhi is supposed to address the Punjab issue of that Channi versus Raja Wadding issue of Punjab Congress, by the end of this week he's supposed to take part in the meeting regarding parliament strategy. Many meetings are lined up for Rahul Gandhi. 17th July, he will be appearing in a public program after his return. We are yet waiting for Congress official reaction. But according to sources, Rahul Gandhi is back in the country after the vacation.
0: All right. Thank you, Jainendra, for getting us all of those important details. Congress, they're coming out with clarification, not officially, but by way of sources, they have said Rahul Gandhi will be back today. Let's shift our focus now. Fresh political war of words has erupted between Samajwadi Party and Congress in UP ahead of assembly elections. In fact, Congress MP Imran Masood has slammed ally SP. Masood has said SP, the party, does not like Muslim leaders who speak their mind. SP hits out at Congress MP Imran Masood, saying Masood speaks only to grab attention. Let's listen in to what these leaders have said.
2: देखिए, मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं. और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए. कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
3: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं. जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है. इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले. ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा. ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं. लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं, ये हमेशा आते हैं सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है।
0: ऑलराइट, टू बी जॉइंड बाय अजय दुबे ऑन दिस। अजय, रिफ्ट बिटवीन कांग्रेस एंड एसपी अहेड ऑफ यूपी पोल्स ओवर अलायंस प्रोस्पेक्ट्स, इफ यू कैन टेक अस थ्रू व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्ड।

0: studies, the way the hearing were done is not correct, and that's why it has ordered a fresh hearing, and it has said that when the Assam Tribunal is hearing again these matters, they have to be uninfluenced by the observations made by the previous tribunal order or the Guwahati High Court order, which had in fact held that these were foreigners in India.
1: All right. So the Supreme Court is saying that every case must follow a fair legal process. Even if a person has been declared a foreigner by a foreigner's tribunal, authorities must ensure legal procedures are properly followed. Thank you, Nupur, for getting us those important details. We'll shift our focus now. The Ram Mandir donation theft case is now headed for a crucial legal and political showdown. Supreme Court is set to hear pleas seeking a court-monitored investigation. Meanwhile, sources tell NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accused confessional statements. Congress has demanded the Prime Minister and Home Minister to respond in Parliament. Aam Aadmi Party has said it will support the opposition if the issue is raised in upcoming monsoon session, while BJP has accused the opposition of politicizing Ram Mandir issue ahead of Uttar Pradesh elections. We have statements and reactions. Take a look.
2: निसंदेह पूरे देश में नहीं अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो SIT बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निसंदेह उसको सजा होगी वो सजा
3: राम मंदिर को हम आप उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से भारत का 100 करोड़ सनातनी देखता है हमारी आस्था का विराट आस्था का हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज बना जिस राम मंदिर के लिए 500 बार हमले हुए हम पर ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देने का काम किया कितनी लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी रही लगातार वो आहत की जा रही थी कुचल ली जा रही थी उनके ऊपर गोलियां चल रही थी लाठियां चलवाई जा रही थी उसके बाद भी भारत का सनातनी और राम भक्त इसे माने नहीं देश का सौभाग्य कि भारत को एक बड़ा नेतृत्व मजबूत नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के रूप में मिला
4: देखिए राम मंदिर ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उससे देशवासियों का सिर नीचा हुआ है आस्था के साथ मजाक उड़ाया है RSS के पदाधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में चूंकि वो ट्रस्ट का गठन हुआ था प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके उद्घाटन किया था और जिस तरह से चंदे का पैसा जो लोग आस्था स्वरूप जाके 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया चढ़ाते थे प्रभु राम के चरणों में उस पैसे के साथ भी इस तरह का धोखाधड़ी होना इस तरह का ये दिखना कि पैसे चोरी हो गए और किसी पे कार्रवाई अब तक नहीं होना ये घोर आश्चर्य का विषय है
1: Let's shift our focus. Breaking updates coming in. BJP served a legal notice to J&K Chief Minister Omar Abdullah over his claims that National Party had attempted to bribe legislators with cash and ministerial berths. BJP has now sent the legal notice, forced these claims by Omar Abdullah. BJP has said Omar must prove his Operation Lotus claims. Rupees 30 crore offered to NC MLAs to switch sides is something Omar Abdullah had alleged. Let's go straight across to our reporter on this. But before that, some reactions coming in.
5: आवश्यकता ही नहीं डिस्टेबल करने की ये खुद डिस्टेबल हो चुके हैं हमें आवश्यकता ही नहीं मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सरकार बनाने के हक में नहीं है जब हम सरकार नहीं बनाएंगे तो हम गिराएंगे क्यों हमें आवश्यकता ही नहीं हाँ इनके परिवार के विरुद्ध परिवारवाद के विरुद्ध इनके अंदर ही लड़ाई हो चुकी है पार्टी टूट चुकी है टूटनी नहीं है इनकी टूट चुके परिवारवाद के खिलाफ
6: अगर मेरे जम्मू के एक MLA ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही

0: का एक अहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का अहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है, हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो।
1: We're joined by Nazeer on this. Nazeer, JNK unit of BJP serving legal notice to Omar Abdullah over his poaching claims. Take us through the details. What does the legal notice really say, and how has the BJP responded to these allegations made by Omar Abdullah?
2: Well, Omar Abdullah is talking about that Operation Lotus is in plain Jammu and Kashmir, and they have tried to bribe one of their MLA with 20 or 30 crore rupees. Now, the BJP has served a legal notice to Omar Abdullah and asked him to reply to that, put a public apology and withdraw his statement, and otherwise he should face the legal consequences. But the fact it is more a political, you know, issue than any legal one. Of course, BJP can take the legal course, but Omar Abdullah is trying to take the political mileage out of it, saying, look how his MLAs are resisting and any sort of lure over 30 crore rupees or 20 crore rupees by BJP, yet the party is united, because he's saying that, look, we're fighting for the statehood and the political rights of Jammu and Kashmir. So Omar Abdullah is raising the pitch over the statehood almost 2 years after he took over as the chief minister. And today is the day when we are, Jammu and Kashmir has been traditionally observing Martyrs Day on July 13th. And now we see that day has now become a controversial day. Today, restrictions have been put in place in Martyrs Day. Even Chief was not able to use Bodhia, and some leaders were put under house arrest yesterday. Having said that, this is now after 2 years of in government, Omar Abdullah is trying to make his political demand heard and making his claim that his MLAs have been, they are trying to bribe them, and BJP is trying to use Operation Lotus in Jammu and Kashmir. And then Omar Abdullah saying, look, it's not a question of Jammu and Kashmir. It's a question of what they did in West Bengal, what they did in Maharashtra, what they did in Punjab as well.
1: All right. So Nazeer there reporting on JNK politics. Thank you for getting all those important details. We'll move on now. A political row has erupted over Yoga Guru Baba Ramdev's remarks on Hindu Rashtra and shared ancestry. Yoga Guru Baba Ramdev said that while religions may differ, everyone's ancestors are the same, and asserted that there is no need to fear the idea of a Hindu Rashtra. He also said Muslims and Christians have nothing to fear in India and urged people to embrace the traditions of their ancestors. Congress leader Salman Khurshid questioned Baba Ramdev's remarks, saying Yoga Guru should explain the context behind his statements. Khurshid asked, if everyone is considered Sanatani, then why attempts are being made to create divisions, adding that such remarks require a clear explanation.
3: हमारे मजहब अलग हो सकते, लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो।
4: बाबा रामदेव ने सनातन धर्म की बात करते हुए मुसलमानों के ताल्लुक से जो बात कही कि मुसलमान भी सनातनी है, उनके पूर्वज भी सनातनी थे। दरअसल ये बाहर से आए हुए लोग हैं, असल इस मुल्क की असल कौम तो द्राविड़ियन है। और बाबा रामदेव ने जो तंज कहा है मुसलमानों पर कि आप दाढ़ी रखें, मूछें कटाएं, यकीनन हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। बाबा रामदेव जैसे मक्कार और नफरती आदमी को हम टोटल रिजेक्ट करते हैं।
5: घबराने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन पूछ तो उनसे लीजिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे ही पूछ लेते, बाबा रामदेव से पूछ लेते कि उन्होंने ये बात कही है ना, मैं कैसे बताऊं कि उनके मन में क्या है और क्या किस बात किस परिप्रेक्ष्य में वो इस बात को कहें। अरे सब सनातनी थे तो फिर यहाँ पर इतने दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है, सबको सनातनी मान लो ना, दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है, कभी इधर कभी उधर की बात क्यों होती है, ये एक सवाल है ना। तो वो पहले वो खुद तय कर लें पहले वो क्या हैं और वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर औरों से बात करें।
6: मैं पूरी तरीके से इसकी निंदा करता हूँ। पहले बात तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत सर्वधर्म संभाव एक सेकुलर कंट्री है और इसमें संविधान ने सबको इस बात की इजाज़त दी है कि अपने धर्म के मुताबिक वो कपड़ा पहने, अपने धर्म के मुताबिक धर्म का पालन करें, रीति रिवाज करें। तो इस प्रकार का बयान जो है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। ये जो बयान है ये अहमकाना बयान है।
1: Shifting tracks, UP is set to get a major infrastructure boost with the inauguration of Lucknow-Kanpur Expressway today. Union Ministers Rajnath Singh and Nitin Gadkari, along with Chief Minister Yogi Adityanath, will dedicate this new corridor to the public. In fact, this is a 63-kilometer six-lane expressway, which is expected to slash travel time between Lucknow and Kanpur from 2 to 3 hours to under 1 hour, while improving connectivity to the region's industrial belt and easing congestion on existing highways. Around 46,000 trees will also be planted along this route, making it a key project aimed at boosting connectivity, logistics and economic growth in Uttar Pradesh. My colleague Ranveer has more details. Take a look.
7: Lucknow is UP's capital, while Kanpur is considered as economic capital of Uttar Pradesh. So the distance between both these cities is around 80 kilometers, and if we talk about the road connectivity, then a national highway is there, but the national highway was very congested because of hundreds and thousands of trucks as well as cars, because Kanpur not only gives thousands of trucks because of many industries, but also the trucks coming from Bundelkhand area also passes through Kanpur, and that's why after completion of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity will be shortened as well as this connectivity will be easier. So obviously after the inauguration of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity between both the cities will be easier as well as comfortable. Kab ye expressway shuru hua tha aur kitne din mein bankar complete hua?
8: Ye to actually November 2023 mein hamara shuru kiya tha, and almost 3 years mein hamne complete kar diya. Total 45 kilometer hai, green expressway hai. And kafi challenge raha kyunki pura green field tha, एक्सेस ठीक ठाक से नहीं था, पूरा एक्सेस हमको बनाना पड़ा। तो इसलिए
7: एक्सप्रेसवे की वैसे लंबाई 63 किलोमीटर है, जिसमें 45 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड है और बाकी एलिवेटेड पार्ट है जो लखनऊ की तरफ से आ रहा है।
8: एलिवेटेड पार्ट है वो पैकेज वन है, और ये 45 किलोमीटर जो पैकेज टू है, ये एक्सक्लूसिवली ग्रीन एक्सप्रेस है, वो एलिवेटेड एक्सप्रेस पैकेज वन है, वो 17.5 किलोमीटर है, टोटल 63 किलोमीटर है।
7: अच्छा, अगर सहूलियत के लिहाज से बात करें तो यहाँ पे क्या क्या ऐसी खासियत है जो किसी भी गाड़ी वाले को ज़्यादा अच्छा फील कराएगी?
8: सहूलियत मतलब जो गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा ATMS फैसिलिटी है, कैमरा लगा हुआ है, VMS वगैरह लगा हुआ है, स्पीडोमीटर वगैरह लगा हुआ है, कोई रॉन्ग साइड में पार्किंग कर देगा, रॉन्ग रूट में जाएगा तो उसके लिए हम लोग कैमरा पूरा लगा हुआ है, कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, 24 आवर्स कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, किधर भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह होगा तो विदिन जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम का अंदर जो 10 to 15 मिनट्स उसके अंदर हमारा एम्बुलेंस पहुँच जाएगा, पेट्रोलिंग व्हीकल पहुँच जाएगा, तो ये सब हेल्प हम लोग 24 आवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं।
1: We'll skip in a short break. More updates on the other side. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है की खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: The politics around Wayanad has intensified once again.

0: के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर।
1: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है, इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा, ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं। ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है।
2: Shifting to news from Kolkata, authorities have suspended prayers at Bakra Mosque near Kolkata Airport, citing heightened security concerns. The decision has sparked a political row, with questions being raised over security access and religious rights. The mosque, located around 165 meters from the runway, has long been identified as a potential concern for airport operations and emergency response. Authorities have stopped issuing entry passes to worshippers, saying unrestricted public access within a high security airport zone is no longer feasible. Supporting the decision, BJP leader and chief minister there, Suvendu Adhikari, said national security and the safety of Kolkata International Airport must take precedence over all the other considerations. The opposition has criticized the move. CPIM leader Hanan Mulla said places of worship should not be affected, arguing that security concerns must be addressed without restricting religious access. Take a look at some of the statements and reactions.
3: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি, ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না, তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা
4: নেই। ও তো বহুত পহলে সে মে জব স্টুডেন্ট থা পেপার মে পড়তা থা কে দমদম এয়ারপোর্ট মে এক মস্ক হ্যায় জিসকে কারণ এয়ারপোর্ট কি জো রানওয়ে হ্যায় উসকো বড়ায়া নেই যা সকা, উস সময় পড়তে থে, কিসি ভি সরকার নে অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্স কে কারণ উসমে হাত নেই দিয়া থা। तो आज हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर विश्वास ही नहीं करती, मॉस्क किसी दूसरी जगह पे बनाया जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत बड़ी बात है।
5: हाँ, जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था, रानवे के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था, उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि रानवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले।
6: देखिए, मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है, अगर वो मस्जिद नहीं होकर मंदिर भी रहता तो भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है। जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय पश्चिम हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ब्रिटिश एयरवेज ने भी ये सवाल उठाया, तो हम लोगों को आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। आज दूसरा सारा राज्य में देखिए कितना एयरपोर्ट है, हम एक ही दमदम लेकर अभी तक पड़ा हुआ है।
7: तो ये रनवे के बीचों बीच होने के हुए है, इसीलिए हमारे यहाँ खाली दो ही जो है ऑपरेटिंग रनवे है। यह टीआर थ्री में है और यहाँ पे घुसने का क्राइटेरिया केवल एक आधार कार्ड है। जितने बार ये लोग नमाज पढ़ने जाते हैं खाली एक आधार कार्ड दिखाता है, जिस आधार कार्ड में इसका गांव के नाम बाकड़ा विलेज लिखा रहता है, और फिर सीआईएसएफ को बकायदा इसको बस में बिठा के 2.5 किलोमीटर अंदर ले जाना पड़ता है, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, फिर वहाँ से वापस आता है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके हर कोई इसी एयरपोर्ट से ट्रैवल करता है। और
8: मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं इसको खिलाफ हूँ। शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी सरकार जो कर रहा है वो जबरदस्ती है।
9: They say that it cannot be replaced in new places. And first is mosque cannot be in place of illegal place.

0: should be state of the land should be secured as wakaf land, and Islamic genuinity should be there. Without that, no mosque can be constructed anywhere in the world. First, so it was done at that time. I had no idea what is the. I think it was some wakaf place. But now the question is renovation and this replacing is no. It is not that it never had done. If an essential service, security service is required, it can be shifted to another places.
1: Supreme Court has issued a notice to Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust in temple donation theft case. Supreme Court has also sought a status report from the SIT constituted by the UP government. Hearing on the matter is now scheduled on July 20th. Meanwhile, sources tell NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accused's confessional statements. Congress has demanded Prime Minister and Home Minister to respond in Parliament. Party has said it will support the opposition if the issue is raised in upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Mandir issue ahead of UP elections. Take a look at the reactions.
2: SIT की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ राम मंदिर चंदा चोरी मामले में, तो अगली डेट मंडे को दी गई है. तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है.
3: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं. कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट. तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए. बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप और डिजर्व हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्टोर भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए. दैट वॉज द फर्स्ट फेयर. सेकेंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है. इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के पर सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दे. तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया.
4: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के. पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, निसंदेह उसको सजा होगी. वो सजा
5: राम मंदिर को हम आप उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से भारत का सौ करोड़ सनातनी देखता है. हमारी आस्था का, विराट आस्था का, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, आदरणीय मोदी योगी जी के नेतृत्व में आना, जिस राम मंदिर के लिए 500 बार हमले हुए हैं, पर न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देने का काम किया, कितनी लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी रही, लगातार वो आहत की जा रही थी, कुचल ली जा रही थी, उनके ऊपर गोलियां चल रही थी, लाठियां चलवाई जा रही थी, उसके बाद भी भारत का सनातनी और राम भक्त इसे माने नहीं. देश का सौभाग्य कि भारत को एक बड़ा नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के रूप में मिला.
6: देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उससे देशवासियों का सिर नीचा हुआ है. आस्था के साथ मजाक उड़ाया है आरएसएस के पदाधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में. चूंकि वो ट्रस्ट का गठन हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके उद्घाटन किया था, और जिस तरह से चंदे का पैसा जो लोग आस्था स्वरूप जाके 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया चढ़ाते थे प्रभु राम के चरणों में, उस पैसे के साथ भी इस तरह का धोखाधड़ी होना, इस तरह का ये दिखना कि पैसे चोरी हो गए और किसी पे कार्रवाई अब तक नहीं होना, ये घोर आश्चर्य का विषय है.
1: The The U.S.-Iran conflict has escalated further after Iran-linked attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz. The U.S. has launched fresh waves of strikes on Iranian military targets. CENTCOM says it hit air defenses, coastal radar, missile and drone sites and attack boats to degrade Iran's ability to threaten shipping and ensure freedom of navigation through the vital waterway. Amid the crisis, an advisor to Mohtaba Khamenei declared the Strait of Hormuz is shut for vessels, calling it more important than atomic bombs and also promising Iran will defend the strategic passage. President Trump insists that Strait of Hormuz remains open and says Iran has been hit hard, while Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says Iran's terror axis is being crushed. Here's how Netanyahu and the IRGC have reacted.
7: את ציר הרשע והטרור האיראני שניסה לקדם את התוכנית להשמדת ישראל באמצעות טבעת חנק של טרור שהוא פרס סביבנו. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית, כולל הסכנה המיידית שנשקפה לנו מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן.
8: זה כל שמגיע לאוזניכם מאיראן המפוארת. המשולש של קבלני התאה סיאסבאית הגנרלים و انا شیحت سوا شلاخم و هنهاگا همه دینیت ها پولیتیکاییم و روشه همم شالا کلام رک میشتم شیم بخم کم اگن انوشی اسپیرالات هشتیکاش نوتس را هی توت سر شل اولیگارخیا پیننسید یتسران ای نشک کلیتیک شورت و ایتون نایم شه خودس به او به مخخم کدی لیمنو هم میخم لاسیم لیو لهیت پرارود و لنفیلا شل میشتار حکی بوش هی خان نمیتسایم ها پولیتیکاییم شلاخم انا شی هم امشال، انا شی حد سوا و هگرمیم هم مرکزیم. و موساد و تپیتاخون شلاخم به محل لاخ حیامیم شباهم. اتم تخت اش و کاش لاخم لحفخین بین یوم للیلا.
1: Iran has launched a wave of missile and drone attacks targeting American military assets across several Gulf nations. The strikes have triggered a fresh confrontation over the strategically vital Strait of Hormuz, with Iran claiming closure on a maritime movement, while Washington insists the waterway remains open. Take a look at this report.
9: The West Asia conflict has entered a dangerous new phase. Iran has carried out a multi-nation barrage of missile and drone attacks targeting the United States-linked military installations across the Gulf region. The strikes were reported in Qatar, Oman, Kuwait, Jordan and the UAE. In Qatar, falling debris from the attacks injured two adults and a child. Iran's focus has also been on United States military infrastructure in the region. In Oman, the port of Qum was among the locations targeted. In Qatar, Iran targeted the Al Udeid Air Base, one of the largest United States military facilities in the region. Kuwait saw attacks on United States military facilities, while Bahrain's United States communications and radar sites were targeted. In Jordan, the Prince Hassan Air Base came under attack. The fallout has also reached commercial shipping lanes. A container ship near the Strait of Hormuz was damaged, forcing its crew to abandon the vessel. One Indian national is reported missing. But Hormuz continues to remain the major flashpoint. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps announced that the Strait of Hormuz is closed until further notice. But the United States has rejected Iran's claim. United States Central Command rebutted that Iran does not control the strait and maritime traffic continues to flow. Washington has maintained that Hormuz is an international waterway and cannot be closed unilaterally. Iran maintains that it controls Hormuz and no ships can pass without its clearance. Tehran has also outlined several transit requirements for vessels passing through the strait under Tehran's stated rules. Ships would need to apply for permission 48 hours in advance and can only make the pass under its supervision. The developments have triggered diplomatic reactions across the region. Qatar has strongly condemned the Iranian attacks, calling them a violation of its sovereignty. Oman has summoned the Iranian ambassador to protest attacks on its territory. Bureau Report, NDTV World.
1: With that, it's a wrap. More news and updates on the other side. Stay tuned.

0: ಈಗ ನಿಮ್ ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ಮೋದಿಯವರ ಲೈನ್ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು? ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುನಿಲ್ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನೇ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನಡೀತದೆ. ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲಿಂದಾನೇ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದು.
1: Shifting our focus to Tamil Nadu now. The state's chief minister, C. Joseph Vijay, is now all set to visit Perambur for his first trip after assuming office, where he will launch key welfare initiatives and also local infrastructure projects. Tamil Nadu chief minister Vijay will also inaugurate the new Perambur MLA office, also launch a fresh ration card distribution drive and inspect the newly constructed bus depot during his first visit to the constituency after taking charge. As his first visit to his home constituency, Perambur, after becoming the chief minister, it also strengthens his connect with the core voters, showcases his hands-on governance style, highlights tech-enabled administration, and also reinforces the government's strong focus on urban welfare. It's extremely important to note also that this is Vijay's first visit to Perambur since assuming office as the Chief Minister of Tamil Nadu. There are a lot of things on the card as C. Joseph Vijay visits Perambur today. That is, of course, long-awaited ration card distribution initiative on Monday with an event in Perambur, to also new tech-enabled institutions there in Perambur. This, of course, at a time when the Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has made some crucial changes in the state, from having that all-women force in the state to his multiple visits to various constituencies. This is going to be his first visit to Perambur, his constituency, since taking charge, where we are looking at digital plus welfare push by the Tamil Nadu Chief Minister. Apart from that, there will also be the drive for ration card, which will also start from Perambur. Apart from that, Vijay will also be inspecting the newly constructed bus depot during his first visit to the constituency. So in total, since Vijay has assumed office, he's rather made a lot of changes in the state. I want to go across to my colleague Vijay, who's joining me live from Chennai. He's joining me live from Perambur. Vijay, you're joining me live from Perambur, where we are waiting for Tamil Nadu Chief Minister to arrive. His first visit since assuming office to his very own constituency.
2: That's right. Along with us, even huge supporters also here gathered here on the two sides of road. I hope we're able to see the visuals, how huge the line is on the two sides of road. Many supporters of Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay have gathered here, especially youth and women supporters who played very crucial role in 2026 elections. As Vijay is here at Perambur constituency for the very first time since he became Chief Minister of Tamil Nadu, for the very first time he is here to inaugurate various schemes. First, he is inaugurating his own MLA office just 100 meters far away from here. This is the last point media is allowed. Inside the MLA office, near to the MLA office, he is also to inspect one PDS shop, ration card shop, and also to distribute new ration cards to new beneficiaries, and also to inspect MTC bus depot, EV charging point, MTC bus depot, and also one e-Sevai Mayam established inside the MLA office to receive petitions or grievances from the constituency people. This is one such important meeting of TVK Chief Vijay with the constituency people, as this is the very first time he's coming here, and he's expected to make a frequent visit also, because remember, just before elections, there were many criticism on Chief Minister C. Joseph Vijay, whether Vijay will be accessible to own constituency people. So, in a way, he's sending a message after Karur visit, after Trichy's visit. This is his third visit as the Chief Minister of Tamil Nadu. We have many supporters also here. Let's try to speak with them. You have a quote for Vijay. How are you doing the government?
3: அதே போல நான் மாதா வரம் தூக்கிட்டேன். மாதா
4: நான் திருச்சி ப்ரோ.
2: என்ன பண்றீங்க?
4: திருச்சியில இருக்கேன் ப்ரோ, ஒர்க்ல இருக்கேன். திருச்சி வந்து இங்க வந்து ஒர்க்ல இருக்கனால
3: விஜய் வருன்னாங்க, அதனால வேலையை விட்டு வந்து நிற்கிறோம் பார்க்குறதுக்கு.
2: ஸோ தேர் ஆல் கேதர்ட் ஹியர் டு சி சீஃப் மினிஸ்டர் சி ஜோசப் விஜய் அண்ட் சே தேர் ஆல்சோ அப்ரிஷியேட்டிங் டூ மந்த்ஸ் ஆஃப் கவர்னன்ஸ். பட் ஹவர் அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் ஹவ் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன். தே ஆர் ஆல் கிரிட்டிசைசிங் விஜய் ஓவர் வேரியஸ் இஷ்யூ. பட் அஸ் வி ஸ்பீக் வில் பிரிங் யூ மோர் அப்டேட்ஸ் வாட் குட் பி வாட் இஸ் த ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் மூட் ஆஃப் பீப்புள் ஹியர் அகெட் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் சி ஜோசப் விஜய் விசிட்.
1: Absolutely, Vijay. We can see a welfare, digital, and a lot of things on card during CM Vijay's first visit to his constituency. But thanks for sharing those ground updates here with us. And shifting our focus, a fresh political flashpoint has erupted within the INDIA bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks. That's ahead of the 2027 assembly elections. Well, Congress MP Imran Masood has now launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that SP won 37 of Lok Sabha seats only because of Congress support. Masood alleged that the SP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning Muslims. The Samajwadi Party has now hit back strongly and dismissed Masood's remarks as an attempt to grab attention, and maintained that the future of the Congress SP alliance will be decided by the high commands of both the parties.
4: Dekhiye, mera nahi samajh mein aata ki main unse kab कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं. और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए. कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है, और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
5: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं. जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है. इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले. ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा. ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं. ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें. ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है.
1: With that, we slip into a very short break, but come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.

0: तो ये रनवे के बीचों बीच होने के हुए है, इसीलिए हमारे यहाँ खाली दो ही जो है ऑपरेटिंग रनवे है। ये Tier 3 में है और यहाँ पे घुसने का क्राइटेरिया केवल एक आधार कार्ड है। जितने बार ये लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, खाली एक आधार कार्ड दिखाता है, जिस आधार कार्ड में इसका गांव के नाम बांकड़ा विलेज लिखा रहता है, और फिर CISF को बकायदा इसको बस में बिठा के 2.5 किलोमीटर अंदर ले जाना पड़ता है, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, फिर वहाँ से वापस आता है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके हर कोई इसी एयरपोर्ट से ट्रैवल करता है। और
1: मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं इसको खिलाफ हूँ। शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी सरकार जो कर रहा है वो जबरदस्ती है।
2: It cannot be replaced in new places. And first is mosque cannot be in place of illegal place. It should be state of the land should be secured as wakaf land and Islamic genuinity should be there. Without that, no mosque can be constructed anywhere in the world. First, so it was done at that time. I had no idea what is the. I think it was some wakaf place. But now the question is renovation and this replacing is no, it is not that it never had done. If an essential service, security service is required, it can be shifted to another places.
3: In other news, Supreme Court has now issued a notice to Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust in temple donation theft case. SC has also sought status report from the SIT constituted by the UP government. Hearing on the matter is now scheduled on July 20th. Meanwhile, sources tell NDTV that the investigation has uncovered some key findings. CCTV footage is said to corroborate the accused's confessional statements. Congress has also demanded the Prime Minister and the Home Minister to respond in Parliament regarding all the donation theft in Ram Mandir. AAP has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session. While the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Mandir issue ahead of the UP elections.
4: आईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ राम मंदिर चंदा चोरी मामले में, तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं किसके आगे क्या हो सकता है।
5: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि DDR जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप और डिजिटल हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्टोर भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वॉज द फर्स्ट फेयर। सेकेंड, जो SIT की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के पर सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दे, तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया।
6: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के। पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, अत्यंत दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो SIT बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निसंदेह उसको सजा होगी, वो सजा।
7: राम मंदिर को हम आप उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से भारत का 100 करोड़ सनातनी देखता है, हमारी आस्था का, विराट आस्था का। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज बना, जिस राम मंदिर के लिए

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
6: 1933। सरसों
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
13: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब है वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। एन इनिशिएटिव बाय गौतम अदानी। यही है वंदे
14: भारतम। योर फर्स्ट मूव सेट्स द डे एंड इन मार्केट्स बीइंग अर्ली इज द एज। द एज बिगिंस द नाइट बिफोर।
15: बिफोर इंडिया वेक्स अप, द न्यूज रूम is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
16: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
14: I decode the global pulse, shaping the market mood.
15: I bring insights that help you make decisions that matter.
16: Inside by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
14: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.

0: मैं यहाँ से जब उसको लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया। उस वक्त 4:30-4 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट होने लग गई। पंखा पंखा पंखा, हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6:30-6 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म हो, तो मुझे डॉक्टरों की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराया का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
2: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था ये?
3: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जांचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जांचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30-4 बजे करीब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में, 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पर रही।
2: किडनी का
3: हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम।
4: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते। तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई या ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।
5: लेर गया जज बैठे, मैं भर्ती करा दी, जद के बच्चों तो होना लो जज में ठीक, रात भर बिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी रहे और पेशन हुई हो, और पेशन हुई हो जद बाबू हुई हो, जद मैं सब खुश हुआ। बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा खाने, जद मैं क्यों खाई हो कह भाई कांपने शिक्षा डोड़ी के मन सर्दी लागे। ले रही हूँ 2-3 घंटा बाद
2: डिलीवरी
5: के बाद बच्चे से मिली माओ मिली के पापा ने बोलो, जब मैं पापा ने फोन करी मैं कहो कि ज़्यादा दिक्कत होगी, जब मैं खाई हो क्या ये खत्म होने वाली है, जब मैं क्यों एकदम रुया खाई हो।
6: आते हैं तो खुशी के लिए लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं, क्या अभी 26 दिन हो गए।
7: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
8: अच्छा,
7: यूरिन नहीं आ रहा था।
8: अच्छा,
7: तो फिर वो खून की कमी

0: ब्लैकनेस गिर गया है, पीलिया वगैरह सब कुछ हुआ है, किडनी लीवर पे असर हुआ।
1: ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी कोई आई होगी इससे हुआ है?
2: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, आईवी फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितने भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये आईवी फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने आईवी फ्लूड काम लिया था, बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
3: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismi Taskin for NDTV.
4: So that's NDTV's big impact there. No accountability yet, but yes, there's hope for action. With that, moving on to the other top focus today, and that too from southern India. During Tamil Nadu campaign, remember the DMK had campaigned in Perambur saying that people of the constituency should have their legislator in Perambur, not in Panayur, to ease their suffering. Perhaps in a counter to that and to show that he can be a chief minister for the state, but he's also

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर डाल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

अंकित शर्मा का जो मर्डर हुआ था वो भी मैंने कवर किया था, और उस दौरान ही ये मालूम चल गया था कि अंकित शर्मा के मर्डर के पीछे ताहिर हुसैन का हाथ है। पुलिस ने मौके से

0: उन्होंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं और उन्होंने जब झगड़े के बीच में लोगों को समझाने की कोशिश की तो लोगों के ग्रुप ने उन्हें किडनैप कर लिया। और किडनैप करने के बाद एलिगेशन ये था कि ताहिर हुसैन, जो उस समय आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उनके घर के बाहर लाया गया और वहाँ पर लगातार उनके साथ में मारपीट की गई। इसके बाद धारदार वेपन से उन पर कई हमले किए गए और जब उनकी मौत हो गई तो मौत के बाद जो चांद बाग पुलिया है वहां पर उनको डाल दिया गया। जब पुलिस ने उनका शव अगले दिन बरामद किया तो उनके शरीर पर 51 चोट के निशान थे। तो इस मामले में एक लंबा ट्रायल चला, 6 साल तक ट्रायल चला। 2023 में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी थी और अब 11 आरोपियों में से 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। तो एक बड़ा फैसला है। परिवार ने 6 साल तक वेट किया इंसाफ का और फाइनली इस मामले में जजमेंट आ गया है। जी,
1: सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश। इमेजिन, इट्स बैड इनफ दैट सच वायलेंस वॉज परपेट्रेटेड इन द नेशनल कैपिटल, पीपल वर किल्ड, बट वॉट इज इवन मोर हॉरिफाइंग इज द एफर्ट बाई सम टू ट्राई एंड वाइट वॉश दिस क्राइम। नाउ द जजमेंट is out. Moving on to the other big story of the day, Jammu and Kashmir statehood push is now heading to the streets of Delhi. National Conference is preparing to take the fight to the national capital with a protest planned at Jantar Mantar in just a week from now. Leading the campaign is Chief Minister Omar Abdullah himself, who not only defended the invite extended to separatist leader Mirwais Omar Farooq, but has now added a rather unexpected name to the conversation. US President Donald Trump. Speaking over the weekend in Jammu, Omar asked whether he should approach the US President outside the White House for the statehood demand to be met. And today, he took the Trump reference a step further, sharing a parody Trump tweet showing the US president supposedly backing the statehood campaign. The BJP, of course, wasted no time in slamming Omar's Trump reference, calling it a criminal attempt to try and internationalize the issue. This brings us to the big question: invite a separatist, invoke Trump. Is this just a joke, a political jab? Or Omar Abdullah's new method to try and push the statehood demand on an international platform.
2: हम दिल्ली का प्रोग्राम करते हैं, 50 से ज्यादा लोगों को जो है हम उसमें शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, उनको एक नाम नजर आता है, 50 में उनको एक कश्मीर के हमारे मजहबी रहनुमा है उनका नाम नजर आया।
3: जम्मू कश्मीर ने जो 35-40 सालों में आतंकवाद की मार झेली है, वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्ल किया? आज उन लोगों को ग्लोरीफाई करके मजहबी रहनुमा मान के अगर उमर अब्दुल्ला साहब चलना चाहते हैं तो फिर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर ये मजहबी रहनुमा के तौर पर उनके लिए मायने रखते हैं तो फिर सलाउद्दीन जैसे खतरनाक और खूंखार आदमी तो शायद इनके लिए अमन के मसीहा होंगे।
2: अब ये हमें कहते हैं ना, जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना, मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए?
4: उमर अब्दुल्लाज डिमांड फॉर स्टेटहुड इज वैलिड बट इट्स नॉट इनफ। The Congress party believes and has always believed in statehood plus. When we say statehood plus, we mean land rights, job rights, resources, constitutional rights of the people on land, jobs and resources. That's what Jammu Kashmir needs now.
5: Umar Abdullah ka ek videshi neta ka naam lekar Jammu Kashmir ke mudde ko antarrashtriya rang dene ka apradhik prayas behad durbhagyapurna hai. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसके विषयों पर समाधान भारत के संविधान और लोकतंत्र संस्थाओं के दायरे में ही होगा।
1: So what does Trump have to do with it? Let's take this across to the guests joining us now. We have political analyst Sushil Pandit from the BJP. We have Shazia Ilmi, and that question I will put to Sheikh Amir of the Congress. Why Donald Trump, Mr. Amir?
6: Yes, can you repeat?
1: Yes, why Donald Trump? What does Donald Trump have to do with whether Jammu and Kashmir gets statehood or not?
6: Well, I believe this is a political sarcasm, not a diplomatic proposal to the government of India. And why are we debating Omar Abdullah? We should be debating about the restoration of statehood in of Jammu and Kashmir. You don't debate about that. You are debating about a particular comment which was

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
10: We are over, Jimmy.
11: Hey! लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: योर फर्स्ट मूव सेट्स द डे एंड इन मार्केट्स बीइंग अर्ली इज द एज। द एज बिगिंस द नाइट बिफोर।
13: बिफोर इंडिया वेक्स अप द न्यूज रूम इज ऑलरेडी बजिंग बिकॉज द मार्केट रिवॉर्ड्स दोज हु आर प्रिपेयर्ड।
14: दैट्स वेयर वी कम इन, tracking momentum and where the markets could move next.
12: I decode the global pulse, shaping the market mood.
13: I bring insights that help you make decisions that matter.
14: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
12: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
5: सरसों से सरसों
6: सब

0: पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: सुबह।
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों
7: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
8: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of.

0: Constable has been cross-examined in multiple hearings. So, eight hearings, he has been cross-examined. What is such a requirement to cross-examine him for eight times?
1: No, no, everything is a priority.
0: First time this has happened.
1: You know, our judicial system and our criminal justice system is notoriously slow. This is something that everyone knows. But it took a simple investigation by Tejasree, my correspondent, to uncover a pattern of leniency. I would use that word. Leniency by the judicial system, by the courts, for a man who's accused of chopping up his girlfriend and throwing her body parts in different parts of Delhi. It appears that the priority is to make sure that the judiciary bends around Aftab's schedule, makes sure that he gets to attend his dental appointment, makes sure that he can take his MA sociology exam, makes sure that he can get a mental wellness check by a psychiatrist, but he does not have to attend a court hearing which could convict him, which will in all likelihood convict him for the murder of his girlfriend Shraddha Walkar. It is absolutely unbelievable. Tejasree, I want you to continue to stay with me, because Aftab Poonawalla's advocate MS Khan, who was supposed to join our show, by the way, viewer, has just heard what I've said on the channel and has disconnected his phone and decided not to join. So if he's watching this, I want to say, please have the guts to join and take our questions on what we are asking here on NDTV. This is a story that shocked the entire country in 2022. The murder and butchering of young Shraddha Walkar by her boyfriend Aftab Poonawalla. So if you have the guts, this is NDTV. We will ask you fair questions. You had agreed to be on the show tonight, and you have watched what we have said, what we have exposed and revealed about the case and the proceedings, and you have decided not to take our questions. I appeal to you to come forward and take our questions. But joining me tonight are the relatives of Shraddha Walkar. Her aunt, Rajal Nayak, is with me live. Rajat Shukla is a classmate of Shraddha's, who since 2022 has been speaking out in her support in the pursuit of justice. Meghna Pant is an author, columnist and activist. Welcome to all of you. Rajal ji, main aapke paas pehle aaunga. Kya aap ye sab sunkar aapko kya mehsoos hua? Jo Aftab ko jo jail mein baitha hai abhi, court hearings attend nahi karna hai usko, MA sociology ka exam lena hai usko, तो कोर्ट ने इजाजत दिया है कि चलो आप स्किप कर लो, आप बाद में देखेंगे हियरिंग्स. अब हमारे रिपोर्टर ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जांच किया है और अब पता चला है कागज को देख के कि आफ्ताब को मल्टीपल बार ऐसे इजाजत दी गई है कि आपको हियरिंग्स को अटेंड नहीं करना है. एक डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए है, एक मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें उसको नहीं अटेंड करना है. आपका क्या कहना है इस पर, रजल जी?
2: जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर टाइम जो भी एयरिंग आता है उसका कुछ ना कुछ रीजंस होता है, लेकिन उसको रीजंस क्यों देना है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है. अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है, आज 5 साल होने को आए, भाई साहब भी मर गए, ऐसे नहीं है वो इंतज़ार कर कर के उसको उसको उसकी हस्ती भी नहीं मिली, कुछ भी करने को नहीं मिला, आज इंतज़ार कर कर के उन्होंने अलविदा कर दिया. लेकिन कब तक हम लोग को न्याय मिलेगा यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है. हम लोग को फांसी चाहिए, उसको फांसी ही देना है तो उसको क्यों आगे पढ़ाई करना है? अगर उसको पढ़ाई करके उसको स्मार्ट बनाना है, वैसे ही उसका दिमाग बहुत स्मार्ट है, जिस तरह उसने श्रद्धा के साथ किया है, आगे वो पढ़ के उसको आप बाइज्जत करोगे, फिर और श्रद्धा बहुत होएंगे, वैसे बहुत चालू है. तो आप ऐसा करना चाहते हो तो ये बात सब गलत है. मैं तो चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा मत करो, एयरिंग ले लो और जो है वो न्याय हम लोग को दो, हमारे बच्ची को न्याय दो, उसको पिताजी के न्याय दो बस.
1: और राजन जी, जब एनडीटीवी ने इस स्टोरी को ब्रेक किया वीकेंड पर, पब्लिक से बहुत गुस्सा आया सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है राजल जी कि कोर्ट्स के लिए प्रायोरिटी न्याय नहीं है श्रद्धा के लिए. कोर्ट्स के लिए लगता है कि उनका प्रायोरिटी है आफ्ताब का शेड्यूल देखना, उनका जो कॉलेज डिग्री है उसका शेड्यूल देखना, उनके मेडिकल अपॉइंटमेंट्स वो सब देखना, प्रायोरिटी न्याय नहीं है।
2: क्यों देखना है? कॉलेज

0: And the parents are making the child get eat food by showing the reel. Then only the child is eating
1: Yeah,
0: today.
1: no, I agree with
0: Only a
1: you.
0: 2-year-old said, I have firstly seen it.
1: You know,
0: So
1: ma'am,
0: therefore, where's the punishment?
1: I agree with you. I completely agree with the point you're making. You know, as in a country which has the largest number of deaths in road accidents, the largest number of deaths in road accidents where minors are driving, you know, India stands tall in that respect. Om Prakash ji has lost his son Anish in a case, and you all of us know that in a country which has so many road accidents, sometimes one accident becomes a signal case, an example case, an exemplary case, like Nirbhaya was for violence against women and rape. You know, one case comes along which everyone has heard about, and you hope that that case will be a beacon for change and reform.
0: No,
1: Shilpa's case with her brother was supposed to be that case 10 years ago. It did not become that. The Pune Post case, Om Prakash ji, अनीश
0: जी
1: के देहांत के बाद हमने कितना बात किया आपसे कि इसमें कुछ होगा,
0: जी
1: क्योंकि
0: सर
1: पूरा देश में गुस्सा फैला हुआ है, अब कुछ होगा, कुछ
0: जी
1: रिफॉर्म होगा। बाप माँ बाप बाहर हैं, डॉक्टर लोग बाहर हैं, नाबालिग बाहर है, जो लोग सैंपल स्विच किए थे उस हॉस्पिटल में उनका भी बेल हो चुका है, वो भी बाहर है, सब लोग जो थे इस केस में वो सब बाहर हैं।
0: ये लड़की बच्ची स्कूल
1: कहा
0: चलता
1: गया
0: सब
1: एग्जाम्पल इस
0: बाहर
1: केस
0: है।
1: का?
0: प्लस सर इसके पहले तो एक मैंने पहले एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने बढ़िया माला वगैरह पहन के नोटों की माला पहन करके पार्टियां मनाए थे। मुंबई से आया मेरा दोस्त, इस तरह ये लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं इस जगह पे। मतलब इनको ये नहीं लगता कि दो बच्चों की जान गई है, दो बच्चे के मतलब पेरेंट्स लोग सब मतलब पीड़ित होंगे, किसी की तकलीफ बढ़ेगी, और ये लोगों ने उस वीडियो को सोशल मीडिया में डाल करके मतलब हम लोग को फिर से पीड़ा बढ़ाई है। जो अभी 2 साल गुजरे थे किस तरह से हम लोग काट रहे हैं हम जानते हैं, उसको फिर से इन्होंने जगा दिया, उस चीज को पीड़ा को हमें फिर बढ़ा दिया है। सुनने में आया था यही आपके जो एडवोकेट साहब जी हैं, हीरे जी हैं, उन्होंने पिटीशन दायर की है पुणे कोर्ट में इनकी जमानत याचिका खारिज करने के लिए। मतलब जो जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट में
1: जी
0: कुछ गाइडलाइन के तहत मिली है शर्तों के अनुसार, तो उसको खारिज करने के लिए पिटीशन फाइल की गई है। हम तो चाहेंगे इनको तुरंत अंदर किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें डर, इन्हीं को देख के, यही सब चीजों को देख करके बाकी सबों को डर नहीं है, किसी कोई डर नहीं है सर कि कानून पालिका किसी तरह से कुछ वो कर सकती है, किसी तरह से कुछ हो रहे, कोई नहीं कर पा रहा, किसी को 1% भी डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, जानते हैं कि मारो सब कुछ करो, और जमानत तो ऐसी रखी हुई है।
1: I'm
0: आई
1: going to
0: अग्री
1: end this show here because I'm out of time. But the reason I wanted to put the spotlight once again, because एक नहीं दो नहीं तीन ऐसे केसेस एक दिन में सामने आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरे शो पर I will give attention to this issue once again, because people who have lost their loved ones, people who have tracked these stories, it is an unending journey for us. And I'm not saying it's the same, but it has to reach somewhere. That's what we believe in very strongly here on NDTV. Constructive conversations to help the people achieve justice. And that's what we will continue doing it, whether it is for Siddharth, whether it is for Anish, whether it is for all the people, including the little child who lost their life in Chhattisgarh today because a 17-year-old thug was driving an SUV. I promise we will keep that fight.
0: सर इसमें एक चीज कहना चाहूंगा मैं,
1: जी जी जी
0: अरुण जी, ये कहना चाहूंगा कि इस तरह केसों में सबसे पहले कार्रवाई, गिरफ्तारी और बाद में करें, सबसे पहले जैसे आजकल चल रहा बुलडोजर कार्रवाई, इनके पेरेंट्स की तरफ बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाए एक दिन में, तो इनको समझ में आए, तो थोड़ा डर लगे कि हाँ कुछ कार्रवाई हो रही है। इनकी अंदर करते हैं, दूसरे दिन जमात लेके बाहर हो जाते हैं, बुलडोजर कार्रवाई जैसे देखने में आ रहा है कि कोर्ट का ऑर्डर हो चाहे, दूसरे दिन बुलडोजर चला देते हैं।
1: सर
0: यही चीज होना चाहिए, जैसे विशाल अग्रवाल का इनकी तरफ बुलडोजर, सब जगह जो ये कार्रवाई जो होनी चाहिए, तो ये
1: शिव
0: बुलडोजर
1: नेक्स्ट टाइम
0: होनी चाहिए।
1: यस यस डॉक्टर
0: शिव,
1: बेदी, वेरी
0: शिव
1: गुड।
0: नेक्स्ट टाइम यू टेक अप दिस सब्जेक्ट, प्लीज लुक एट द व्हाट एक्शन has happened concerning the families
1: I will
0: and
1: do
0: the
1: that.
0: school. Let's do a little survey on that.
1: I will do that. I've given you only two examples. I will find more. I take your point. We will extend this conversation because I guarantee you, 1 week from now, there will be even more cases of minors having driven cars. Hopefully, nobody will be killed in those incidents. Thank you very much, Dr. Bedi, Om Prakash Ji, and Shilpa, for being with me here tonight on India Matters. It's a wrap here on the show. If you have been, thanks so much for watching. As always, we take up the big stories that matter to you and matter to India. Left, right, and center with Vishnu's.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड डाल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey. लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
8: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
12: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
13: वाओ मामा क्या स्वाद है।
14: अरे मेरे राजा
15: सबका राजा आकर मसाला।
16: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
9: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
8: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?

0: जब उसको लेके गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4-4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट होने लग गई। पंखा, हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट करते करते सुबह 6-6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, तो नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टर की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराए का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा।

0: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई, ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।
1: लेर गया जज बैठे, मैं भर्ती करा दी, जद के बच्चों तो होना लो जज में ठीक, रात भर बिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी रहे, अर पेश नहीं हो जद बाबू हो, जद मैं सब खुश हुआ है, बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा करने, जद मैं क्यों खाई हो कह भाई कांपने शिक्षा डोड़ी के मन सर्दी लागे, ले रही हूँ 2-3 घंटा बाद।
2: डिलीवरी
1: पर बच्चे से मिली माओ मिली के पापा ने बोलो, जब मैं पापा ने फोन करी मैं कहो कि ज़्यादा दिक्कत होगी, जब मैं खाई हो क्या ये खत्म होने वाली है, जब मैं क्यों एकदम रही खाई हो।
3: आते हैं तो खुशी के लिए, लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं, क्या अभी 26 दिन हो गए।
4: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
5: अच्छा,
4: यूरिन नहीं आ रहा था।
5: अच्छा,
4: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गया, पीलिया वगैरह सब कुछ हुआ, किडनी लिवर पे असर। ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी कोई आई होगी, इससे हो रहा है।
6: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, आईवी फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितने भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये आईवी फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने आईवी फ्लूड काम लिया था, बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
7: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismita Skin for NDTV.
8: Moving on to the other political stories that we are tracking, the BJP has intensified its attack on Congress MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra over their absence from landslide hit Wayanad. The BJP alleges that the two leaders failed to stand with affected families, accusing Priyanka of limiting her response to a social media post and neglecting the constituency after the tragedy. Adding to the criticism was former CPI MP Hanan Mulla, who said that since Wayanad is their constituency, it is Rahul and Priyanka's duty to be there during a crisis. He also said that the elected representatives must stand by the people whenever their constituency faces such hardships.
9: Wayanad is nothing but a mere political pawn for the Congress First family. Srimati Priyanka Gandhi Vadra, who represents Wayanad like an absentee landlord, has totally neglected and abandoned the constituency, similar to how Rahul Gandhi previously exploited Wayanad. It has been 6 days since the devastating Wayanad landslide, which has claimed up to 8 lives so far. But the Wayanad MP Srimati Priyanka Gandhi Vadra has not bothered to visit the constituency or meet and console the grieving families of the victims who've lost their lives.
10: Their constituency, it is up to their duty to see. Everybody has their constituency. If there is a problem, they go and stand by the people. And then whatever they have thought better, they are doing. But people will decide.
8: And well, on the other hand, the BJP has once again turned the spotlight on Rahul Gandhi's absence, questioning his nearly 3-week stay abroad and demanding details of his foreign visit. The BJP leaders are asking, where is Rahul Gandhi and where is he travelling to? Whom is he meeting and who actually funded his travel and stay? And actually, why the Congress has remained silent on his whereabouts, saying the public deserves transparency and deserves to know where the leader of opposition actually is. Now, Congress sources, however, say that Rahul Gandhi is returning to India today after nearly 3-week visit.

0: Visit to the Europe. While the party has issued no official statement on this, leave sources have said that he is scheduled to attend the Chhatro Ki Goonj event in Dehradun on July 17th. Rahul's return comes at a crucial political juncture with the monsoon session approaching and key organizational challenges that are prevailing in Punjab, Goa and Uttar Pradesh as well that are waiting his attention.
1: Rahul Baba kahan hai? Dhoondiye. ढूंढिए जरा कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। वह भी टूर कर रहे हैं, यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में, जरूर मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी।
2: बीजेपी हैज आल्सो टुडे रेज अ बिग क्वेश्चन, वेयर इज राहुल गांधी, वेयर इज ही हॉलीडेइंग, एंड देयर आर द
3: राहुल गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज ही गॉन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, हैज ही गॉन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद राहुल गांधी? When the Prime Minister goes abroad as Prime Minister on the expense of the country, of the taxpayer, he comes back empty-handed. Shouldn't that be the question? Why is he going distributing melodies in across the world and making a fool of himself? I'm sorry.
2: So the leader of oppositions, you're saying that public shouldn't know where the leader of opposition is?
3: Well, when obviously people know where he is. He's gone on a break and he's back.
4: राहुल गांधी लापता है। पिछले 20 दिनों से राहुल गांधी विदेश में मजे से छुट्टियां मना रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज राहुल गांधी वापस आने वाले हैं, पर देश की जनता ये पूछना चाहती है कि पिछले इतने दिनों में राहुल गांधी थे कहाँ, किससे मिले, किसने राहुल गांधी को फंड किया? क्या वो एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस एलिमेंट से राहुल गांधी मिलने गए थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका पूरा इटिनरी सार्वजनिक नहीं कर सकती? आज ये वापस से साबित हो गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं।
0: While the Congress party is already facing a war of words and a political flashpoint with the BJP, what it's also experiencing is a political batter from its own ally, that is the Samajwadi Party. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of the 2027 Assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that the Samajwadi Party won 37 Lok Sabha seats only because of the Congress support. Now, Masood has alleged that the BSP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he has also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning the Muslims. The Samajwadi Party, meanwhile, has hit back strongly and dismissed Imran Masood's remarks as an attempt to grab the attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both the parties.
5: Okay, Mira. नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं, और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई है। अगर 37 सीट आई है उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई है, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर।
6: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है। इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है। इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं। ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है।

0: All right, let's move on and tell you what's happening in the case of the Ram Temple donation theft probe, where the Supreme Court has issued a notice to the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust in the temple donation theft case. Now, the Supreme Court has also sought status report from the SIT that had been constituted by the Uttar Pradesh government. Hearing on the matter is now scheduled on the July 20th. Meanwhile, sources have also told NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accuser's confessional statements. Now, Congress has demanded the Prime Minister and Home Minister to respond in the Parliament. The Aam Aadmi Party, meanwhile, has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Temple issue ahead of the Uttar Pradesh elections. Lots of political reaction coming in on that story.
1: आईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में, तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है।
2: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं। कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाईटी की है, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप और डीजर्ज हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वाज द फर्स्ट फेयर। सेकंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के पर सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दें। तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया।
3: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में, हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के। पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, अत्यंत दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, निसंदेह उसको सजा होगी, वो
0: सजा। And with that, it's time for us to slip into a short break. Don't go anywhere. After the break, we get you the international headlines.

0: उसको लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुँह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि एमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट होने लग गई। पंखा पंखा पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिया। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, कि नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टर की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने घर बैठा हूँ, मकान किराएगा मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
2: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था?
3: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जाँचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर अंत तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जाँचें कराई। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद ही बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में। 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पे रही
2: किडनी का।
3: हाँ हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी है, सबकी सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की वो बेच दी मैंने उसी टाइम।
4: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते। तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई, ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।
5: लेर गया जज बैठे, मैं भर्ती करा दी, जज के बच्चों तो होना लो जज में ठीक, रात भर मिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी अर्पेश नहीं हो जज बाबू यो, जज मैं सब खुश हुआ। बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा खाने, जज मैं क्यों खाई हो कह भाई कहाँ अपने शिक्षा डोड़ी के मन सर्दी लागे। ले रही हूँ 2-3 घंटा बाद
2: डिलीवरी के बाद बच्चे से मिली थी,
5: बच्चे मिली, माँ मिली कि पापा ने बोलो, जब मैं पापा ने फोन करी मैं कहो कि ज़्यादा दिक्कत होगी, जब मैं खाई हो क्या ये ख़त्म होने वाली है, जब मैं क्यों एक दम रही खाई हो।
6: आते हैं तो खुशी के लिए लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं क्या, अभी 26 दिन हो गया।
7: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
8: अच्छा,
7: यूरिन नहीं आ रहा था।
8: अच्छा,
7: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गया, पीलिया वगैरह कुछ सब कुछ हुआ है, किडनी लिवर पे असर। ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी नहीं आई होगी जिससे हो रहा है।
9: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, आईवी फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितने भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये आईवी फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने आईवी फ्लूड काम लिया था, बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
10: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismi Taskin for NDTV.
8: Moving on to the other political stories that we are tracking, the BJP has intensified its attack on Congress MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra over their absence from landslide hit Wayanad. The BJP alleges that the two leaders failed to stand with affected families, accusing Priyanka of limiting her response to a social media post and neglecting the constituency after the tragedy. Adding to the criticism was former CPI MP Hanan Mulla, who said that since Wayanad is their constituency, it is Rahul and Priyanka's duty to be there during a crisis. He also said that the elected representatives must stand by the people whenever their constituency faces such hardships.
11: Wayanad is nothing but a mere political pawn for the Congress First Family. Srimati Priyanka Gandhi Vadra, who represents Wayanad like an absentee landlord, has totally neglected and abandoned the constituency, similar to how Rahul Gandhi previously exploited Wayanad. It has been 6 days since the devastating Wayanad landslide, which has claimed up to 8 lives so far. But the Wayanad MP Srimati Priyanka Gandhi Vadra has not bothered to visit the constituency or meet and console the grieving families of the victims who've lost their lives.
12: Their constituency, it is up to their duty to see. Everybody has their constituency. If there is a problem, they go and stand by the people. And whatever they have thought better, they are doing. But people will decide.
8: And well, on the other hand, the BJP has once again turned the spotlight on Rahul Gandhi's absence, questioning his nearly 3-week stay abroad and demanding details of his foreign visit. The BJP leaders are asking, where is Rahul Gandhi and where is he travelling to? Whom is he meeting and who actually funded his travel and stay? And actually, why the Congress has remained silent on his whereabouts, saying the public deserves transparency and deserves to know where the leader of opposition actually is. Now, Congress sources, however, say that Rahul Gandhi is returning to India today after nearly 3-week visit to the Europe. While the party has issued no official statement on this leave, sources have said that he is scheduled to attend the Chhatro Ki Goonj event in Dehradun on July 17th. Rahul's return comes at a crucial political juncture with the monsoon session approaching and key organizational challenges that are prevailing in Punjab, Goa and Uttar Pradesh as well that are waiting his attention.
13: Rahul Baba kahan hai? Dhoondiye. Dhoondiye jara kahan hai? Pata nahi. Kahan hai? Woh bhi tour kar rahe hai. यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए, प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी.
14: BJP has also today raised a big question. Where is Rahul Gandhi? Where is he holidaying? And there are the.
15: Is Rahul Gandhi the Prime Minister of India? Has he gone on government expense? Has he gone on government expense? What is this obsession with Rahul Gandhi? When the Prime Minister goes abroad as Prime Minister on the expense of the country, of the taxpayer, he comes back empty-handed. Shouldn't that be the question? Why is he going distributing melodies in across the world and making a fool of himself? I'm sorry.
14: So the leader of opposition, you're saying that public shouldn't know where the leader of opposition is?
15: Well, when obviously people know where he is, he's gone on a break and he's back.
16: Rahul Gandhi lapata hai. Pichle 20 dinon se Rahul Gandhi videsh mein maze se chuttiyan mana rahe hain. Ab Congress party keh rahi hai ki aaj Rahul Gandhi wapas aane wale hain. पर देश की जनता ये पूछना चाहती है कि पिछले इतने दिनों में राहुल गांधी थे कहाँ, किससे मिले, किसने राहुल गांधी को फंड किया, क्या वो एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस एलिमेंट से राहुल गांधी मिलने गए थे इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका पूरा इटिनरी सार्वजनिक नहीं कर सकती. आज ये वापस से साबित हो गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं.
8: And while the Congress party is already facing a war of words and a political flashpoint with the BJP, what it's also experiencing is a political batter from its own ally, that is the Samajwadi Party. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of the 2027 Assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that the Samajwadi Party won 37 Lok Sabha seats only because of the Congress support. Now, Masood has alleged that the SP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he has also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning the Muslims. The Samajwadi Party, meanwhile, has hit back strongly and dismissed Imran Masood's remarks as an attempt to grab the attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both the parties.
17: देखिए मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं, और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए. कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है, और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
18: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं. जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है. इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले. ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा. ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं. ये हमेशा आते हैं, सोचते इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें. ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है.
8: All right, let's move on and tell you what's happening in the case of the Ram Temple donation theft probe, where the Supreme Court has issued a notice to the Ram Janbhoomi Tirth Kshetra Trust in the temple donation theft case. Now, the Supreme Court has also sought status report from the SIT that had been constituted by the Uttar Pradesh government. Hearing on the matter is now scheduled on the July 20th. Meanwhile, sources have also told NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accuser's confessional statements. Now, Congress has demanded the Prime Minister and Home Minister to respond in the Parliament. The Aam Aadmi Party, meanwhile, has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Temple issue ahead of the Uttar Pradesh elections. Lots of political reaction coming in on that story.
19: एसआईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ राम मंदिर चंदा चोरी मामले में. तो अगली डेट मंडे को दी गई है. तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है.
20: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं. कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट. तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए. बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑर्डर हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं. तो उनको प्रिजर्व किया जाए, दैट वाज द फर्स्ट फेयर. सेकंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के पर सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दे. तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया.
21: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के. पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, अत्यंत दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो SIT बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निसंदेह उसको सजा होगी, वो सजा।
8: And with that, it's time for us to slip into a short break. Don't go anywhere. After the break, we get you the international headlines.

0: It's absolutely unbelievable. Tejasree, I want you to continue to stay with me because Aftab Poonawalla's advocate MS Khan, who was supposed to join our show, by the way, viewer, has just heard what I've said on the channel and has disconnected his phone and decided not to join. So if he's watching this, I want to say, please have the guts to join and take our questions on what we are asking here on NDTV. This is a story that shocked the entire country in 2022. The murder and butchering of young Shraddha Walkar by her boyfriend Aftab Poonawalla. So if you have the guts, this is NDTV, we will ask you fair questions. You had agreed to be on the show tonight and you have watched what we have said, what we have exposed and revealed about the case and the proceedings, and you have decided not to take our questions. I appeal to you to come forward and take our questions. But joining me tonight are the relatives of Shraddha Walkar. Her aunt, Rajal Nayak, is with me live. Rajat Shukla is a classmate of Shraddha's, who since 2022 has been speaking out in her support in the pursuit of justice. Meghna Pant is an author, columnist and activist. Welcome to all of you. Rajal ji, main aapke paas pehle aaunga. Kya aap ye sab sunkar aapko kya mehsoos hua? Jo Aftab ko jo jail mein baitha hai abhi, court hearings attend nahi karna hai usko, MA sociology ka exam lena hai usko, to court ne ijazat diya hai ki chalo aap skip kar lo, ab baad mein dekhenge hearings. Ab hamare reporter ne thoda investigation jaanch kiya hai aur ab pata chala hai kagaz ko dekh ke ki Aftab ko multiple bar aise ijazat di gayi hai ki aapko hearings ko attend nahi karna hai. Ek dental appointment ke liye hai, ek mental health checkup ke liye hai. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें उसको नहीं अटेंड करना है. आपका क्या कहना है इस पर, राजल जी?
1: जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर टाइम जो भी एयरिंग आता है उसका कुछ ना कुछ रीजंस होता है, लेकिन उसको रीजंस क्यों देना है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है. अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है, आज 5 साल होने को आए, भाई साहब भी मर गए, ऐसे नहीं है वो इंतज़ार कर करके उसको उसकी हस्ती भी नहीं मिली, कुछ भी करने को नहीं मिला, आज इंतज़ार कर करके उन्होंने अलविदा कर दिया. लेकिन कब तक हम लोग को न्याय मिलेगा यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है. हम लोग को फांसी चाहिए, उसको फांसी ही देना है, तो उसको क्यों आगे पढ़ाई करना है? अगर उसको पढ़ाई करके उसको स्मार्ट बनाना है, वैसे ही उसका दिमाग बहुत स्मार्ट है, जिस तरह उसने श्रद्धा के साथ किया है, आगे वो पढ़ के उसको आप बाइज्जत करोगे, फिर और श्रद्धा बहुत होएंगे, वैसे बहुत चालू है, तो आप ऐसा करना चाहते हो, तो ये बात सब गलत है. मैं तो चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा मत करो, एयरिंग ले लो और जो है वो न्याय हम लोग को दो, हमारे बच्ची को न्याय दो, उसको पिताजी के न्याय दो बस.
0: और राजल जी, जब NDTV ने इस स्टोरी को ब्रेक किया वीकेंड पर, पब्लिक से बहुत गुस्सा आया सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है राजल जी कि कोर्ट्स के लिए प्रायोरिटी न्याय नहीं है श्रद्धा के लिए. कोर्ट्स के लिए लगता है कि उनका प्रायोरिटी है आफताब का शेड्यूल देखना, उनका जो कॉलेज डिग्री है उसका शेड्यूल देखना, उनके मेडिकल अपॉइंटमेंट्स वो सब देखना. प्रायोरिटी न्याय नहीं है.
1: क्यों देखना है कॉलेज डिग्री क्यों लेना है? नहीं, हम लोग को न्याय चाहिए ना, हम लोग को न्याय चाहिए. उसका कॉलेज का क्यों देख रहे हैं? कोर्ट उसका क्यों देख रहे हैं? हम लोग ने गुनाह किया है, हम लोग ने गुनाह नहीं किया, उसने गुनाह किया है. तो आप कोर्ट किसका देखना चाहिए? हमारा देखना चाहिए कि उसको देखना चाहिए? गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, उसको क्यों देख रहे हैं? इतना साल क्यों दिया? अगर ये फास्ट ट्रैक पे है तो फास्ट ट्रैक के हिसाब से अभी तक हम लोग को न्याय मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला हमको न्याय? मैं ये कहना चाहती हूँ, पब्लिक तो भड़क गया, वैसे भी वो बाहर आएगा ना, वो जिंदा नहीं बचेगा. हम लोग देंगे न्याय, हम लोग काटेंगे उसको. अगर कोर्ट ने नहीं काटा तो हम लोग काटेंगे. उसको फांसी देनी चाहिए और तभी हमारे श्रद्धा को शांति मिलेगी और उसके डैडी को भी. हम सब लोग उसका इंतजार कर रहे इतने साल से. आज हम लोग दिल्ली आते हैं, क्यों आते हैं? हमारे बच्चे के लिए आते हैं. हमारी लॉयर बहुत अच्छी है, वो हम लोग को अपडेट देती है, लेकिन हमारे लॉयर को भी बोला नहीं जाता है. लॉयर को वो लोग वैल्यू नहीं देते. क्यों नहीं देते? इसका जिम्मेदार कौन है?

0: मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे बच्चे को न्याय चाहिए, उसका देखना है तो वैसा हम लोग को कुछ तो बताओ क्यों दिया है, उसका रीजन चाहिए हमको बस।
1: क्या आपको लगता है राजल जी, क्या आपको लगता है कि इस केस में
0: जी
1: प्रायोरिटीज बिल्कुल गलत हैं? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्यों लगता है कि ऐसे हो रहा है? ये प्रायोरिटी आफ्ताब पर क्यों आ गया है ना कि न्याय पर?
0: मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर से क्या चल रहा है। हम लोग को हमेशा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही दिए जाते हैं, अंदर क्या चल रहा है हम लोग को कुछ बताते नहीं है, अंदर हम लोग को लेते नहीं है, हम लोग को बताते नहीं है अंदर क्या चल रहा है हम लोग को। यार उसको अभी उसको पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, उसको फांसी देनी है तो ये सब करना ज़रूरी नहीं है ना, क्या ज़रूरत क्या है? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है अंदर क्या चल रहा है, हमारे बच्चे को न्याय मिलने वाला है कि नहीं है, इतना उसके लाड़ प्यार क्यों चल रहा है? जो आदमी उसके टुकड़े करता है और उसको तुम लोग संभालते हो, इतने साल से उसको जेल में रखा है, अभी पता नहीं उसको जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती होगी, अभी ऐसे ही लग रहा है। जैसे कोर्ट में आता है हंसते हंसते आता है, हंसते हंसते जाता है, हम लोग ने आंखों से देखा है, वो लगता ही नहीं है उसने कुछ गुनाह किया है। हम लोग ने गुनाह किया है क्योंकि हम लोग दूर से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं हमारे बच्चे के न्याय न्याय मिलने के लिए, हम लोग टेंशन में रहते हैं हमारे बच्चे को न्याय कब मिलेगा। उसको तो आते हैं, वो तो वीआईपी जैसा आता है, वीआईपी जैसे जाता है, उसको खाना पीना मस्त चल रहा है, ये क्या चल रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है।
1: रजत शुक्ला, यू आर अ क्लासमेट एंड अ फ्रेंड ऑफ श्रद्धाज, यू हैव बीन वेटिंग ऑल्सो फॉर 4 years. How angry are you or how shocked are you that Aftab is being given the permission to skip summons, postpone summons, as NDTV has just investigated and found out, for MA sociology exam, dental appointment, mental health checkup, and many other such reasons? The judges seem to be happy to give Aftab permission to skip summons. Rajat, how do you feel about that?
2: Yeah, I feel that the very definition of democracy is being killed by what's happening. It feels that Aftab is a first-class citizen and Shraddha and people around Shraddha are third-class citizens. It truly feels that way.
1: I agree.
2: And my question is straight. I'm going to ask any and everybody responsible in the authority who can do something and everything in this case. The first would be to the judge himself, the one in Saket's court. What is his name? If you may please tell me.
1: H.S. Jaggi. Justice H.S. Jaggi, but don't address the judge directly.
2: So my
1: your
2: question,
1: emotions
2: my
1: are understood, but yeah.
2: If this goes to him, to Mr. Jaggi, the judge, will he, if by any chance, God forbid, I'm sorry, but if the same happens to his daughter, will he behave the same way? And if not, then why is he on this position to do such a partiality with Shraddha? I want this answer from him.
1: This is a very fair question that, is asked. Meghna, I want to bring you in on this. This is, you know, this anger from Shraddha's aunt, one of the only living relatives who is there, and Rajat, one of her only friends who has had the guts to step forward, is completely understandable. They are shocked. They are shocked that a judge would allow this murder accused. I don't need to remind you about the barbarism of the case. Meghna, you were on this channel and you were with me on my shows when we covered this 4 years ago.
3: Yes. They're
1: allowing him to do everything except attending. Meghna, what do you think?
3: I have tears in my eyes right now because Shiv, I'm not understanding. Anger is justified, but there's a sense of hopelessness that I'm feeling as a woman of this country and as a survivor of domestic violence. There are 200 million women in this country, and this is just reported cases. That's more

उसको लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख की मॉर्निंग को 4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट से होने लग गई। पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट करते करते सुबह 6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।

0: कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
1: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था ये?
2: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जांचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जांचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में, 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पर रही।
1: किडनी का
2: हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम।
3: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई, ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है, तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।
4: लेर गया जद बैठे मैं भर्ती करा दी, जद के बच्चों तो ऊना लो जद में ठीक, रात भर बिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी अर्पेशन हो जद बाबू हो, जद मैं सब खुश हुआ है, बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा खाने, जद मैं क्यों खाई हो कह भाई कहाँ अपने शिक्षक डोड़ी के मन सर्दी लागे, ले रही हूँ 2-3 घंटा बाद
1: डिलीवरी के बाद बच्चे से मिली थी।
4: हाँ बच्चे मिली, माँ मिली कि पापा ने बोलो, जब मैं पापा ने फोन करी मैं कहो कि ज़्यादा दिक्कत होगी, जब मैं खाई हो क्या ये ख़त्म होने वाली है, जब मैं क्यों एकदम रही खाई हो।
5: आते हैं तो खुशी के लिए, लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं, क्या अभी 26 दिन हो गया।
6: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
7: अच्छा,
6: यूरिन नहीं आ रहा था।
7: अच्छा,
6: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गया है, पीलिया वगैरह वो सब कुछ हुआ है, किडनी निकल गया सर। ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी नहीं होगी जिससे हो रहा है।
8: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, आईवी फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितनी भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये आईवी फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने आईवी फ्लूड काम लिया था, बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
9: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismi Taskin for NDTV.
10: Moving on to the other political stories that we are tracking, the BJP has intensified its attack on Congress MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra over their absence from landslide hit Wayanad. The BJP alleges that the two leaders failed to stand with affected families, accusing Priyanka of limiting her response to a social media post and neglecting the constituency after the tragedy. Adding to the criticism was former CPI MP Hanan Mulla, who said that since Wayanad is their constituency, it is Rahul and Priyanka's duty to be there during a crisis. He also said that the elected representatives must stand by the people whenever their constituency faces such hardships.
11: Wayanad is nothing but a mere political pawn for the Congress First family. Srimati Priyanka Gandhi Vadra, who represents Wayanad like an absentee landlord, has totally neglected and abandoned the constituency, similar to how Rahul Gandhi previously exploited Wayanad. It has been 6 days since the devastating Wayanad landslide, which has claimed up to 8 lives so far. But the Wayanad MP Srimati Priyanka Gandhi Vadra has not bothered to visit the constituency or meet and console the grieving families of the victims who lost their lives.
12: Their constituency is up to their duty to see. Everybody has their constituency. If there is a problem.

0: problem, they go and stand by the people. And then whatever they have thought better, they are doing. But people will decide.
1: And well, on the other hand, the BJP has once again turned the spotlight on Rahul Gandhi's absence, questioning his nearly 3-week stay abroad and demanding details of his foreign visit. The BJP leaders are asking, where is Rahul Gandhi and where is he travelling to? Whom is he meeting and who actually funded his travel and stay? And actually, why the Congress has remained silent on his whereabouts, saying the public deserves transparency and deserves to know where the leader of opposition actually is. Now, Congress sources, however, say that Rahul Gandhi is returning to India today after nearly 3-week visit to Europe. While the party has issued no official statement on this leave, sources have said that he is scheduled to attend the Chhatro Ki Goonj event in Dehradun on July 17th. Rahul's return comes at a crucial political juncture with the monsoon session approaching and key organizational challenges that are prevailing in Punjab, Goa and Uttar Pradesh as well that are waiting his attention.
2: Rahul Baba kahan hai? Dhoondiye. Dhoondiye jara kahan hai? Bata nahi. Kahan hai? Woh bhi tour kar rahe hai. यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए. प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी.
3: बीजेपी हैज आल्सो टुडे रेज अ बिग क्वेश्चन, वेयर इज राहुल गांधी, वेयर इज ही हॉलिडेइंग, एंड देयर आर द
4: राहुल गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज ही गॉन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, हैज ही गॉन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद राहुल गांधी? व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गोज अब्रॉड एज प्राइम मिनिस्टर ऑन द एक्सपेंस ऑफ द कंट्री ऑफ द टैक्स पेयर, ही कम्स बैक एम्प्टी हैंडेड, शुड दैट बी द क्वेश्चन? Why is he going distributing melodies in across the world and making a fool of himself? I'm sorry.
3: So the leader of opposition, you're saying that public shouldn't know where the leader of opposition is?
4: Well, when obviously people know where he is, he's gone on a break and he's back.
5: Rahul Gandhi lapata hai. Pichle 20 dinon se Rahul Gandhi videsh mein maze se chuttiyan mana rahe hain. Ab Congress party keh rahi hai ki aaj Rahul Gandhi wapas aane wale hain. पर देश की जनता ये पूछना चाहती है कि पिछले इतने दिनों में राहुल गांधी थे कहाँ, किससे मिले, किसने राहुल गांधी को फंड किया, क्या वो एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस एलिमेंट से राहुल गांधी मिलने गए थे इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका पूरा इटिनरी सार्वजनिक नहीं कर सकती. आज ये वापस से साबित हो गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं.
1: While the Congress party is already facing a war of words and a political flashpoint with the BJP, what it's also experiencing is a political batter from its own ally, that is the Samajwadi Party. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of the 2027 Assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that the Samajwadi Party won 37 Lok Sabha seats only because of the Congress support. Now, Masood has alleged that the BSP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he has also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning the Muslims. The Samajwadi Party, meanwhile, has hit back strongly and dismissed Imran Masood's remarks as an attempt to grab the attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both the parties.
6: नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए. कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
7: इमरान मसूद जी भी ओपी

0: राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है। इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं। ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है।
1: All right, let's move on and tell you what's happening in the case of the Ram Temple donation theft probe, where the Supreme Court has issued a notice to the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust in the temple donation theft case. Now, the Supreme Court has also sought status report from the SIT that had been constituted by the Uttar Pradesh government. Hearing on the matter is now scheduled on the July 20th. Meanwhile, sources have also told NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accuser's confessional statements. Now, Congress has demanded the Prime Minister and Home Minister to respond in the Parliament. The Aam Aadmi Party, meanwhile, has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Temple issue ahead of the Uttar Pradesh elections. Lots of political reaction coming in on that story.
2: एसआईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में, तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है।
3: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑर्डर हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वाज द फर्स्ट फेयर। सेकंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के पर सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दे। तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जस्ट साहब ने डेट लगा दिया।
4: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के। पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, अत्यंत दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, निसंदेह उसको सजा होगी।
5: They say morning shows the day. Markets often have other plans. By midday, the story can be very different. That's when the right insights helps you rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12, your edge for every move.
6: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
7: I'm delighted to be chairing a meeting of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
8: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
9: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
10: It's also important that how they are reshaping the industries.
11: We've got a fantastic jury, and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
6: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
12: today's last word becomes tomorrow's first edge.

0: मैं यहाँ से जब उसको लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4-4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट होने लग गई। पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट करते करते सुबह 6-6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, तो नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टरों की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराए का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
2: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था
3: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जाँचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जाँचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में, 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पर रही।
2: किडनी का
3: हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी है सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम।
4: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते। तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई या ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।
5: ले गया जज बैठे, मैं भर्ती करा दी, जज के बच्चे तो होना लो जज में ठीक, रात भर बिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी रहे और पैसे नहीं हो, अरे पैसे नहीं हो जज बाबू ही हो, जज मैं सब खुश हुआ है। बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा खाने, जज मैं क्यों खाई हो, कह भाई कहाँ अपने शिक्षा डोड़ी के मन सर्दी लागे, ले रही हूँ 2-3 घंटा बाद।
2: डिलीवरी के बाद बच्चे से मिली थी?
5: हाँ बच्चे मिली, माओ मिली कि पापा ने बोलो, जब मैं पापा ने फ़ोन करी मैं कहो कि ज़्यादा दिक्कत होगी, जब मैं खाई हो क्या ये ख़त्म होने वाली है, जब मैं क्यों एकदम रुआ खाई हो।
6: आते हैं तो खुशी के लिए लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं, क्या अभी 26 दिन हो गए।
7: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
2: अच्छा,
7: यूरिन नहीं आ रहा था।
2: अच्छा,
7: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गया, पीलिया वगैरह कुछ सब कुछ हुआ है, किडनी में बल गया सर। ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी मिठाई होगी इससे हो रहा है।
8: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, IV फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितनी भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये IV फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने IV फ्लूड काम लिया था, बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
9: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismita Askin for NDTV.
10: Moving on to the other political stories that we are tracking, the BJP has intensified its attack on Congress MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra over their absence from landslide hit Wayanad. The BJP alleges that the two leaders failed to stand with affected families, accusing Priyanka of limiting her response to a social media post and neglecting the constituency after the tragedy. Adding to the criticism was former CPI MP Hanan Mulla, who said that since Wayanad is their constituency, it is Rahul and Priyanka's duty to be there during a crisis. He also said that the elected representatives must stand by the people whenever their constituency faces such hardships.
11: Wayanad is nothing but a mere political pawn for the Congress First family. Srimati Priyanka Gandhi Vadra, who represents Wayanad like an absentee landlord, has totally neglected and abandoned the constituency, similar to how Rahul Gandhi previously exploited Wayanad. It has been 6 days since the devastating Wayanad landslide, which has claimed up to 8 lives so far. But the Wayanad MP Srimati Priyanka Gandhi Vadra has not bothered to visit the constituency or meet and console the grieving families of the victims who've lost their lives.
12: Their constituency, it is up to their duty to see. Everybody has their constituency. If there is a problem, they go and stand by the people. And then whatever they have thought better, they are doing. But people will decide.
10: And well, on the other hand, the BJP has once again turned the spotlight on Rahul Gandhi's absence, questioning his nearly 3-week stay abroad and demanding details of his foreign visit. The BJP leaders are asking, where is Rahul Gandhi and where is he travelling to? Whom is he meeting and who actually funded his travel and stay? And actually, why the Congress has remained silent on his whereabouts, saying the public deserves transparency and deserves to know where the leader of opposition actually is. Now, Congress sources, however, say that Rahul Gandhi is returning to India today after nearly 3-week visit to Europe. While the party has issued no official statement on this leave, sources have said that he is scheduled to attend the Chhatron Ki Goonj event in Dehradun on July 17th. Rahul's return comes at a crucial political juncture with the monsoon session approaching and key organizational challenges that are prevailing in Punjab, Goa and Uttar Pradesh as well that are waiting his attention.
13: Rahul Baba kahan hai? Dhoondiye zara kahan hai? Pata nahi kahan hai? Wo bhi tour kar rahe hain. यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए. प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी.
14: BJP has also today raised a big question: where is Rahul Gandhi? Where is he holidaying? And there are the
15: Rahul Gandhi, the Prime Minister of India. Has he gone on government expense? Has he gone on government expense? What is this obsession with Rahul Gandhi? When the Prime Minister goes abroad as Prime Minister on the expense of the country, of the taxpayer, he comes back empty-handed. Shouldn't that be the question? Why is he going distributing melodies in across the world and making a fool of himself? I'm sorry.
14: So the leader of opposition, you're saying that public shouldn't know where the leader of opposition is?
15: Well, when obviously people know where he is. He's gone on a break and he's back.
16: Rahul Gandhi lapata hai. Pichle 20 dinon se Rahul Gandhi videsh mein maze se chuttiyan mana rahe hain. Ab Congress party keh rahi hai ki aaj Rahul Gandhi wapas aane wale hain. पर देश की जनता ये पूछना चाहती है कि पिछले इतने दिनों में राहुल गांधी थे कहाँ, किससे मिले, किसने राहुल गांधी को फंड किया, क्या वो एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस एलिमेंट से राहुल गांधी मिलने गए थे इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका पूरा इटिनरी सार्वजनिक नहीं कर सकती. आज ये वापस से साबित हो गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं.
10: And while the Congress party is already facing a war of words and a political flashpoint with the BJP, what it's also experiencing is a political batter from its own ally, that is the Samajwadi Party. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of the 2027 Assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that the Samajwadi Party won 37 Lok Sabha seats only because of the Congress support. Now, Masood has alleged that the BSP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he has also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning the Muslims. The Samajwadi Party, meanwhile, has hit back strongly and dismissed Imran Masood's remarks as an attempt to grab the attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both the parties.
17: देखिए, मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं, और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए. कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है, और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
18: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं. जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है. इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले. ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा. ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं. ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें. ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है.
10: All right, let's move on and tell you what's happening in the case of the Ram Temple donation theft probe, where the Supreme Court has issued a notice to the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust in the temple donation theft case. Now, the Supreme Court has also sought status report from the SIT that had been constituted by the Uttar Pradesh government. Hearing on the matter is now scheduled on the July 20th. Meanwhile, sources have also told NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accuser's confessional statements. Now, Congress has demanded the Prime Minister and Home Minister to respond in the Parliament. The Aam Aadmi Party, meanwhile, has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Temple issue ahead of the Uttar Pradesh elections. Lots of political reaction coming in on that story.
19: आईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में. तो अगली डेट मंडे को दी गई है. तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है. तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है.
20: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं. कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाईटी की है, राइट. तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए. बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑर्डर हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डस्टर्ड भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं. तो उनको प्रिजर्व किया जाए. दैट वॉज द फर्स्ट फेयर. सेकंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है. इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के पर सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दें. तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया.
21: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के. पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, अत्यंत दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो SIT बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निस्संदेह उसको सजा होगी।
0: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
1: When markets close, clarity matters as much as speed.
0: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
1: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
0: Join us before every closing bell
1: on India Market Close.
22: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
23: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
24: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
25: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
26: Humko haq hamare party ke Balasaheb Thackeray ne diya, jahan bhi anyay ho.
25: Aap cooperator ho ya gunde ho sir? नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
26: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है उसका हमको अफसोस है।
25: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे, क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
26: प्रशिक्षण हम हमारे
25: नहीं मांगेंगे
26: सर।
27: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
28: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
29: Hello and welcome to watching Prime.
28: The show that sets the prime time agenda.
29: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
28: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: उसको लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुँह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि एमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4-4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया, घबराहट से होने लग गई। पंखा पंखा पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6-6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। लास्ट टाइम आगे बताते हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, कि नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टरों की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराया का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
2: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था?
3: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जाँचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जाँचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद ही बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में, 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पे रही।
2: किडनी का
3: हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम।
4: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते। तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई, ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।
5: लेर गया जद बैठे मैं भर्ती करा दी, जद के बच्चों तो ऊना लो जद में ठीक, रात भर बिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी रहे, अर पेश नहीं हो जद बाबू यो, जद मैं सब खुश हुआ है। बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा खाने, जद मैं क्यों खाई हो कह भाई कहाँ अपने शिक्षक डोड़ी के मन सर्दी लागे, डिलीवरी हूँ 2-3 घंटा बाद।
2: डिलीवरी के बाद बच्चे से मिली थी?
5: हाँ बच्चे मिली, माँ मिली कि पापा ने बोलो, जब मैं पापा ने फोन करी मैं कहो कि ज़्यादा दिक्कत होगी, जब मैं खाई हो क्या ये ख़त्म होने वाली है, जब मैं क्यों एकदम रही खाई हो।
6: आते हैं तो खुशी के लिए लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं, क्या अभी 26 दिन हो गया।
7: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
8: अच्छा,
7: यूरिन नहीं आ रहा था।
8: अच्छा,
7: तो फिर वो खून की कमी, ब्लैकनेस गिर गया, पीलिया वगैरह वो सब कुछ हुआ है, किडनी में गिर गया सर। ये तो कोई जहाँ पता चला है कोई दवाई वगैरह ऐसी कोई आई होगी जिससे हो रहा
9: है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, आईवी फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितने भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये आईवी फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने आईवी फ्लूड काम लिया था, बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
10: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismi Taskin for NDTV.
8: Moving on to the other political stories that we are tracking, the BJP has intensified its attack on Congress MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra over their absence from landslide hit Wayanad. The BJP alleges that the two leaders failed to stand with affected families, accusing Priyanka of limiting her response to a social media post and neglecting the constituency after the tragedy. Adding to the criticism was former CPI MP Hanan Mulla, who said that since Wayanad is their constituency, it is Rahul and Priyanka's duty to be there during a crisis. He also said that the elected representatives must stand by the people whenever their constituency faces such hardships.
11: Wayanad is nothing but a mere political pawn for the Congress First family. Srimati Priyanka Gandhi Vadra, who represents Wayanad like an absentee landlord, has totally neglected and abandoned the constituency, similar to how Rahul Gandhi previously exploited Wayanad. It has been 6 days since the devastating Wayanad landslide, which has claimed up to 8 lives so far. But the Wayanad MP Srimati Priyanka Gandhi Vadra has not bothered to visit the constituency or meet and console the grieving families of the victims who lost their lives.
12: Their constituency is up to their duty to see. Everybody has their constituency. If there is a problem, they go and stand by the people. And whatever they have thought better, they are doing. But people will decide.
8: And well, on the other hand, the BJP has once again turned the spotlight on Rahul Gandhi's absence, questioning his nearly 3-week stay abroad and demanding details of his foreign visit. The BJP leaders are asking, where is Rahul Gandhi and where is he travelling to? Whom is he meeting and who actually funded his travel and stay? And actually, why the Congress has remained silent on his whereabouts, saying the public deserves transparency and deserves to know where the leader of opposition actually is. Now, Congress sources, however, say that Rahul Gandhi is returning to India today after nearly 3-week visit to Europe. While the party has issued no official statement on this leave, sources have said that he is scheduled to attend the Chhatro Ki Goonj event in Dehradun on July 17th. Rahul's return comes at a crucial political juncture with the monsoon session approaching and key organizational challenges that are prevailing in Punjab, Goa and Uttar Pradesh as well that are waiting his attention.
13: Rahul Baba kahan hai? Dhoondiye zara kahan hai? Pata nahi kahan hai? Woh bhi tour kar rahe hain. यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए. प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी.
14: बीजेपी हैज आल्सो टुडे रेज अ बिग क्वेश्चन, वेयर इज राहुल गांधी, वेयर इज ही हॉलीडेइंग, एंड देयर आर द
15: राहुल गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज ही गॉन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, हैज ही गॉन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद राहुल गांधी? व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गोज अब्रॉड एज प्राइम मिनिस्टर ऑन द एक्सपेंस ऑफ द कंट्री ऑफ द टैक्स पेयर, ही कम्स बैक एम्प्टी हैंडेड, शुडंट दैट बी द क्वेश्चन? Why is he going distributing melodies in across the world and making a fool of himself? I'm sorry.
14: So the leader of opposition, you're saying that public shouldn't know where the leader of opposition is?
15: Well, when obviously people know where he is, he's gone on a break and he's back.
16: Rahul Gandhi lapata hai. Pichle 20 dinon se Rahul Gandhi videsh mein maze se chuttiyan mana rahe hain. Ab Congress party keh rahi hai ki aaj Rahul Gandhi wapas aane wale hain. पर देश की जनता ये पूछना चाहती है कि पिछले इतने दिनों में राहुल गांधी थे कहां, किससे मिले, किसने राहुल गांधी को फंड किया? क्या वो एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस एलिमेंट से राहुल गांधी मिलने गए थे इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका पूरा इटिनरी सार्वजनिक नहीं कर सकती? आज ये वापस से साबित हो गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं.
8: And while the Congress party is already facing a war of words and a political flashpoint with the BJP, what it's also experiencing is a political batter from its own ally, that is the Samajwadi Party. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of the 2027 assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that the Samajwadi Party won 37 Lok Sabha seats only because of the Congress support. Now, Masood has alleged that the SP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he has also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning the Muslims. The Samajwadi Party, meanwhile, has hit back strongly and dismissed Imran Masood's remarks as an attempt to grab the attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both the parties.
17: नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं. और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए, कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
18: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं. जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है. इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले. ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा. ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं. ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें. ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है.

0: से जब उसको लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुँह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया, घबराहट से होने लग गई। पंखा पंखा पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर ICU में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। लास्ट में आगे बताते हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, तो नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टर की लापरवाही लग रही है। अपना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराएगा मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
2: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था ये?
3: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जांचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर अंत तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जांचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में, 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पे रही
2: किडनी का।
3: हाँ हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी, सबकी सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की वो बेच दी मैंने उसी टाइम।
4: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई, ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है, तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।

0: लेर गया जज बैठे मैं भर्ती करा दी जद के बच्चे तो ऊना लो जद में ठीक रात भर बिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी रहे और पेशन हो अरे पेशन हो जद बाबू हो जद मैं सब खुश हुआ बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा खाने जद मैं क्यों खाई हो कह भाई कहाँ अपने शिक्षा डोड़ी के मन सर्दी लागे ले रही हूँ 2-3 घंटा बाद बच्चे मिली माओ मिली के पापा ने बोलो जन मैं पापा ने फोन करी मैं कहो कि ज़्यादा दिक्कत होगी जब मैं खाई हो क्या ये खत्म होने वाली है जब मैं एक दम रुया खाई हो
1: आते हैं तो खुशी के लिए लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं क्या अभी 26 दिन हो गए
2: वो इंफेक्शन हो गया था शरीर के अंदर वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी
3: अच्छा
2: यूरिन नहीं आ रहा था
3: अच्छा
2: तो फिर वो खून की कमी ब्लेडनेस गिर गए पीलिया वगैरह सब कुछ हुआ है किडनी निकल गया सर ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी मिलाई होगी इससे हो
4: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है आईवी फ्लूड है और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितने भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए सस्पेक्शन है उन पे ये आईवी फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था उस दिन ही खोला था नए बैच की हमने आईवी फ्लूड काम लिया था बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे पहले से काम ले रहे थे
5: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismi Taskin for NDTV.
6: Moving on to the other political stories that we are tracking, the BJP has intensified its attack on Congress MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra over their absence from landslide hit Wayanad. The BJP alleges that the two leaders failed to stand with affected families, accusing Priyanka of limiting her response to a social media post and neglecting the constituency after the tragedy. Adding to the criticism was former CPI MP Hanan Mulla, who said that since Wayanad is their constituency, it is Rahul and Priyanka's duty to be there during a crisis. He also said that the elected representatives must stand by the people whenever their constituency faces such hardships.
7: Wayanad is nothing but a mere political pawn for the Congress First family. Srimati Priyanka Gandhi Vadra, who represents Wayanad like an absentee landlord, has totally neglected and abandoned the constituency, similar to how Rahul Gandhi previously exploited Wayanad. It has been 6 days since the devastating Wayanad landslide, which has claimed up to 8 lives so far. But the Wayanad MP Srimati Priyanka Gandhi Vadra has not bothered to visit the constituency or meet and console the grieving families of the victims who've lost their lives.
8: Their constituency, it is up to their duty to see. Everybody has their constituency. If there is a problem, they go and stand by the people. And then whatever they have thought better, they are doing. But people will decide.
6: And well, on the other hand, the BJP has once again turned the spotlight on Rahul Gandhi's absence, questioning his nearly 3-week stay abroad and demanding details of his foreign visit. The BJP leaders are asking, where is Rahul Gandhi and where is he travelling to? Whom is he meeting and who actually funded his travel and stay? And actually, why the Congress has remained silent on his whereabouts, saying the public deserves transparency and deserves to know where the leader of opposition actually is. Now, Congress sources, however, say that Rahul Gandhi is returning to India today after nearly 3-week visit to the Europe. While the party has issued no official statement on this leave, sources have said that he is scheduled to attend the Chhatro Ki Goonj event in Dehradun on July 17th. Rahul's return comes at a crucial political juncture with the monsoon session approaching and key organizational challenges that are prevailing in Punjab, Goa and Uttar Pradesh as well that are waiting his attention.
9: Rahul Baba kahan hai? Dhoondiye. Dhoondiye jara kahan hai? Pata nahi. Kahan hai? Wo bhi tour kar rahe hai. यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए, प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी।
3: BJP has also today raised a big question: where is Rahul Gandhi? Where is he holidaying? And there are the
10: Is Rahul Gandhi the Prime Minister of India? Has he gone on government expense? What is this obsession with Rahul Gandhi? When the Prime Minister goes abroad as Prime Minister on the expense of the country, of the taxpayer, he comes back empty-handed. Shouldn't that be the question? Why is he going distributing melodies in across the world and making a fool of himself? I'm sorry.
3: So the leader of oppositions, you're saying that public shouldn't know where the leader of opposition is?
10: Well, when obviously people know where he is, he's gone on a break and he's back.
11: Rahul Gandhi lapata hai. Pichle 20 dinon se Rahul Gandhi videsh mein maze se chuttiyan mana rahe hain. Ab Congress party keh rahi hai ki aaj Rahul Gandhi wapas aane wale hain. Par desh ki janta ye puchna chahti hai ki pichle itne dinon mein Rahul Gandhi the kahan? Kisse mile? किसने राहुल गांधी को फंड किया? क्या वो एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस एलिमेंट से राहुल गांधी मिलने गए थे इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका पूरा इटिनरी सार्वजनिक नहीं कर सकती? आज ये वापस से साबित हो गया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं।
6: While the Congress party is already facing a war of words and a political flashpoint with the BJP, what it's also experiencing is a political batter from its own ally, that is the Samajwadi Party. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of the 2027 Assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that the Samajwadi Party won 37 Lok Sabha seats only because of the Congress support. Now, Masood has alleged that the BSP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he has also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning the Muslims. The Samajwadi Party, meanwhile, has hit back strongly and dismissed Imran Masood's remarks as an attempt to grab the attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both the parties.
12: Okay, Mira. नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई है। अगर 37 सीट आई है उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई है, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर।
13: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है। इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है। इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं। ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है।
6: All right, let's move on and tell you what's happening in the case of the Ram Temple donation theft probe, where the Supreme Court has issued a notice to the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust in the temple donation theft case. Now, the Supreme Court has also sought status report from the SIT that had been constituted by the Uttar Pradesh government. Hearing on the matter is now scheduled on the July 20th. Meanwhile, sources have also told NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accuser's confessional statements. Now, Congress has demanded the Prime Minister and Home Minister to respond in the Parliament. The Aam Aadmi Party, meanwhile, has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Temple issue ahead of the Uttar Pradesh elections. Lots of political reaction coming in on that story.
14: सोसाइटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में, तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है।
15: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑर्डर हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वाज द फर्स्ट फेयर। सेकंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दें, तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जस्ट साहब ने डेट लगा दिया।
16: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के। पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निसंदेह उसको सजा होगी।
17: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life. The show that sets the prime time agenda.
18: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
17: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
19: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
20: So many attacks.
19: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
20: It's incredible.
19: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
20: Welcome to Left, Right and Center.
19: Hard facts.
20: War struck country.
19: Hard questions.
20: In the Ukraine.
19: 30 years of trust.
20: In the Kargil area.
21: North Ukraine. In France. In Italy.
20: At Srinagar.
21: I am Mr.
20: Vishnu Shom for NDTV.
19: Vishnu Shom. Only on NDTV.
22: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
23: That if a boy from Ahmedabad, with no capital and no connections, could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
24: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार. प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक. An initiative by Gautam Adani. यही है वंदे
19: भारतम. India Inc's most respected names chose India Inc's best and brightest.
25: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
26: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
27: I think it's also important that how they are reshaping the industries. Commercial activities which they are into. and it's a very judicious

0: करना है, एक डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए है, एक मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें उसको नहीं अटेंड करना है। आपका क्या कहना है इस पर राजल जी?
1: जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर टाइम जो भी एयरिंग आता है उसका कुछ ना कुछ रीज़न्स होता है, लेकिन उसको रीज़न्स क्यों देना है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है, आज 5 साल होने को आए, भाई साहब भी मर गए, ऐसे नहीं है वो इंतज़ार कर कर के उसको उसको उसकी हस्ती भी नहीं मिली, कुछ भी करने को नहीं मिला, आज इंतज़ार कर कर के उन्होंने अलविदा कर दिया, लेकिन कब तक हम लोग को न्याय मिलेगा यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग को फांसी चाहिए, उसको फांसी ही देना है तो उसको क्यों आगे पढ़ाई करना है? अगर उसको पढ़ाई करके उसको स्मार्ट बनाना है, वैसे ही उसका दिमाग बहुत स्मार्ट है, जिस तरह उसने श्रद्धा के साथ किया है, आगे वो पढ़ के उसको आप बाइज्जत करोगे, फिर और श्रद्धा बहुत होएंगे, वैसे बहुत चालू है, तो आप ऐसा करना चाहते हो तो ये बात सब गलत है। मैं तो चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा मत करो, एयरिंग ले लो और जो है वो न्याय हम लोग को दो, हमारे बच्ची को न्याय दो, उसको पिताजी के न्याय दो बस।
0: और राजल जी, जब एनडीटीवी ने इस स्टोरी को ब्रेक किया वीकेंड पर, पब्लिक से बहुत गुस्सा आया सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है राजल जी कि कोर्ट्स के लिए प्रायोरिटी न्याय नहीं है श्रद्धा के लिए, कोर्ट्स के लिए लगता है कि उनका प्रायोरिटी है आफ्ताब का शेड्यूल देखना, उनका जो कॉलेज डिग्री है उसका शेड्यूल देखना, उनके मेडिकल अपॉइंटमेंट्स वो सब देखना, प्रायोरिटी न्याय नहीं है।
1: क्यों देखना है कॉलेज डिग्री क्यों लेना है? नहीं, हम लोग को न्याय चाहिए ना, हम लोग को न्याय चाहिए, उसका कॉलेज का क्यों देख रहे, कोर्ट उसका क्यों देख रहे, हम लोग ने गुनाह किया है, हम लोग ने गुनाह नहीं किया, उसने गुनाह किया है, तो आप कोर्ट किसका देखना चाहिए, हमारा देखना चाहिए कि उसको देखना चाहिए? गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, उसको क्यों देख रहे हैं, इतना साल क्यों दिया? अगर ये फास्ट ट्रैक पे है तो फास्ट ट्रैक के हिसाब से अभी तक हम लोग को न्याय मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला हमको न्याय? मैं ये कहना चाहती हूँ, पब्लिक तो भड़के गया, वैसे भी वो बाहर आएगा ना, वो जिंदा नहीं बचेगा, हम लोग देंगे न्याय, हम लोग काटेंगे उसको, अगर कोर्ट ने नहीं काटा तो हम लोग काटेंगे, उसको फांसी देनी चाहिए और तभी हमारे श्रद्धा को शांति मिलेगी और उसके डैडी को भी, हम सब लोग उसका इंतजार कर रहे इतने साल से, आज हम लोग दिल्ली आते हैं, क्यों आते हैं? हमारे बच्चे के लिए आते हैं, हमारी लॉयर बहुत अच्छी है, वो हम लोग को अपडेट देती है, लेकिन हमारे लॉयर को भी बोला नहीं जाता है, लॉयर को वो लोग वैल्यू नहीं देते, क्यों नहीं देते? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे बच्ची को न्याय चाहिए, उसका देखना है तो वैसा हम लोग को कुछ तो बताओ क्यों दिया है, उसका रीजन चाहिए हमको बस।
0: क्या आपको लगता है राजल जी, क्या आपको लगता है कि इस केस में
1: जी
0: प्रायोरिटीज बिल्कुल गलत हैं? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्यों लगता है कि ऐसे हो रहा है? ये प्रायोरिटी आफ्ताब पर क्यों आ गया है ना कि न्याय पर?
1: मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर से क्या चल रहा है, हम लोग को हमेशा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही दिया जाता है, अंदर क्या चल रहा है हम लोग को कुछ बताते नहीं है, अंदर हम लोग को लेते नहीं है, हम लोग को बताते नहीं है, अंदर क्या चल रहा है हम लोग को यार, उसको अभी उसको पढ़ाई के लिए दे रहे, उसको फांसी देनी है तो ये सब करना ज़रूरी नहीं है ना, क्या ज़रूरत क्या है? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है, अंदर क्या चल रहा है, हमारी बच्ची को न्याय मिलने वाला है कि नहीं है? इतना उसके लाड़ प्यार क्यों चल रहा है? जो आदमी उसके टुकड़े करता है और उसको तुम लोग संभालते हो, इतने साल से उसको जेल में रखा है, अभी पता नहीं उसको जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती होगी, अभी ऐसे ही लग रहा है, जैसे कोर्ट में आता है हंसते हंसते आता है, हंसते हंसते जाता है, हम लोग ने आंखों से देखा है, वो लगता ही नहीं है उसने कुछ गुनाह किया है, हम लोग ने गुनाह किया है, क्योंकि हम लोग दूर से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, हमारे बच्ची के न्याय न्याय मिलने के लिए हम लोग टेंशन में रहते हैं, हमारे बच्ची को न्याय कब मिलेगा? उसको तो आते हैं, वो तो वीआईपी जैसा आता है, वीआईपी जैसे जाता है, उसको खाना पीना मस्त चल रहा है, ये क्या चल रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है।
0: रजत शुक्ला, You are a classmate and a friend of Shraddha's. You have been waiting also for 4 years. How angry are you, or how shocked are you, that Aftab is being given the permission to skip summons, postpone summons, as NDTV has just investigated and found out, for MA sociology exam, dental appointment, mental health checkup, and many other such reasons? The judges seem to be happy to give Aftab permission to skip summons. Rajat, how do you feel about that?
2: Yeah, I feel that the very definition of democracy is being killed by what's happening. It feels that Aftab is a first-class citizen and Shraddha and people around Shraddha are third-class citizens. It truly feels that way.
0: I agree.
2: And my question is straight. I'm going to ask any and everybody responsible in the authority who can do something and everything in this case. The first would be to the judge himself, the one in Saket's court. What is his name, if you may please tell me?
0: H.S. Jaggi. Justice H.S. Jaggi, but don't address the judge directly.
2: So my
0: Your
2: question,
0: emotions
2: my
0: are understood, question would be to, but yeah.
2: If this goes to him, to Mr. Jaggi, the judge, will he, if by any chance, God forbid, I'm sorry, but if the same happens to his daughter, will he behave the same way? And if not, then why is he on this position to do such a partiality with Shraddha? I want this answer from him.
0: This is a very fair question that, is asked. Meghna, I want to bring you in on this. This is, you know, this anger from Shraddha's aunt, one of the only living relatives who is there, and Rajat, one of her only friends who has had the guts to step forward, is completely understandable. They are shocked. They are shocked that a judge would allow this murder accused. I don't need to remind you about the barbarism of the case. Meghna, you were on this channel and you were with me on my shows when we covered this 4 years ago.
3: Yes. They're
0: allowing him to do everything except attending. Meghna, what do you think?
3: I have tears in my eyes right now because, Shiv, I'm not understanding. Anger is justified, but there's a sense of hopelessness that I'm feeling as a woman of this country and as a survivor of domestic violence. There are 200 million women in this country. And this is just reported cases. That's more than the population of Australia. You can order biryani, banyan and bengan in 15 minutes in this country, but getting justice 15 years also not enough. Why? What is going on? Would the judiciary be the same if 90% of perpetrators were women? I mean, what is going on? This system is designed not to protect the women of this country, but to exhaust us. This legal process has become another more barbaric form of punishment, a new kind of trauma. Systemic cruelty against women that is taking place. And I'm not blaming the judges. I'm talking about the judiciary. I'm talking about the system. I mean, women are already reporting only 10% of cases in this country because of exactly what the earlier panelists pointed off. Tariq pe tariq pe tariq. Who wants to enter the legal system? Then you're met with delays, adjournments, humiliation. I have gone through this process. The kind of character assassination I have faced as a woman in front of female judges based on zero evidence. It's so patriarchal. You are asking women to first survive cruelty, abuse, adultery. Then you are sitting and thopoing them with institutional cruelty of this barbaric nature. I mean, and institutional cruelty is not just somebody shouting at a woman. It's a file being adjourned for the 15th time, a survivor taking unpaid leave. Earlier, the ma'am was talking about coming from Bombay. I mean, imagine the time, the money, the investment. You are literally, you know, putting the victim and their family through so much of trauma. Why? Yeah. Have you forgotten whom you're serving in the first place? Why are you so partial to the accused and not protecting the victims? Where is the dignity, urgency and humanity, Shiv? It's been 4 years. 35 pieces of that poor girl's body and the headlines about Aftab's MA examination and not about his punishment, why has the guy not been hanged by now?
0: You know,
3: this is the real tragedy.
0: You're absolutely right.

0: And I actually wanted to remind our viewers and remind ourselves also about the barbarism in this case. Maafi chahta hoon, Rajal ji. Ek baar main apne darshakon ko remind karna chahta hoon ki Aftab ne kya kiya tha Shraddha ke saath. Ek baar main remind karna chahta hoon kyunki ye important hai. In the context of what we are talking about Rajat and Meghna, it's important to understand what this man is accused of doing and the kind of favors he's being given by the court. Just look at what he's doing. He is accused of killing his live-in partner, Shraddha Walkar, strangled her after an argument. Shraddha's body was dismembered, which means it was chopped into pieces. He stored the pieces of her body inside a refrigerator and disposed of the remains in little polythene bags in different locations over several days. Mehroli, Chhattarpur, all parts of South Delhi in the jungles. Charged with murder and causing the disappearance of evidence, Aftab has pleaded not guilty. Let me just remind all of you, Meghna, Rajat, Rajal madam, that Shraddha has not even been cremated. She has not even been cremated because the case is still on. And her body parts are still part of evidence in a case that continues to stretch on. Rajal ji, Nyay to dur ki baat hai. Abhi to system to atak gaya hai. To give favors. Favors dene ke liye Aftab ko. Rajat, can you hear me?
1: Yeah, I can hear you very well.
0: I am just wondering where things have gone, you know, where the system has got lost in such a case. I remember the Shraddha case. Meghna has been on my show multiple times. You've been on my show, Rajat, as well, multiple times. Not only have people forgotten, the system has completely gone in the opposite direction to give favors to the accused. Rajat?
1: Yeah, I mean, see, either this is a case where too much corruption is happening and a scrutiny must be done as to why this is happening and why there is such a big delay in such a case which has horrified the whole nation. And Aftab himself, if I remember, this news was all over the television on all the channels where Aftab's statement was he has no remorse. He is going to get some 72 virgins in Jannat, some statements like that, you know. After that as well, when he himself confessed that, you know, he has killed and, you know, thrown away pieces at all these places. He himself helped the police to find those pieces. What are these people waiting for? I mean, anybody understand?
0: I
1: understand is this is a major case of corruption happening. A lot of money has been given to these people, maybe. That can be a very possible angle here.
0: You know, I want to share something with all of you. Our reporter Tejashri Meghna came back with court documents, proceedings, etc. to show that a single witness has been cross-examined over 8 separate hearings over several weeks at the request of the defense because they want to cross-reference, they want to check information. And there is one hearing every few weeks. So 8 separate hearings, you can imagine how long it actually takes. It is no surprise to me that this case is nowhere near being over. Rajal Nayak ji, agar meri baat aa rahi hai, meri awaaz aa rahi hai aapko, mera sawaal ye hai ki, कौन लड़ेगा अब श्रद्धा के लिए? आप हैं जो दिल्ली आते हैं इस हियरिंग्स अटेंड करने के लिए, और कौन है? आपके भाई साहब गुजर गए हैं पिछले साल, कौन रह गया अभी जो श्रद्धा का युद्ध लड़ेगा? कौन कौन है ये?
2: हम लोग ही लड़ेंगे. उनका बेटा है श्री वालकर, वो भी है, जैसे जेम्स गोंसाल्विस उनके दोस्त है. हम तीनों हमेशा दिल्ली आते थे उनके साथ. अभी भाई साहब तो नहीं है, लेकिन भाई साहब जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे पे आई है, और बेटा अभी छोटा है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो ले रहा है, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं क्योंकि भाई साहब खुद नहीं चाहते थे श्री को इन्वॉल्व करने के लिए. तभी हम लोग, मैं और जेम्स गोंसाल्विस, हम दोनों ज़्यादा उनके साथ रहते थे और केसेस हैंडल करते थे उनके साथ. और जैसे कि हमारी लॉयर सीमा खुशवा, उनके साथ हमारी बातचीत तो होती है, तो वो हमें अपडेट देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि हमको पता ही नहीं चला। हम लोग सोच रहे थे कि 19 को निकलेंगे बॉम्बे से और 20 का एयरिंग करेंगे भी वापस आएंगे। उसके बाद सडनली हम लोग को ऐसे न्यूज़ आता है कि एयरिंग कैसे ये हो गई है, तो यही समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ये सब क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, अंदर का पॉलिटिक्स है कि उसको कोई बख्श दे रहा है कि उसका समाज उनको दे रहा है। अगर हर लड़की, आजकल लड़की सेफ नहीं है सबको पता है, तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा कायदा निकालना चाहिए कि लड़की को तुरंत कोई भी अच्छा सा न्याय मिलना चाहिए। बस हो गया, अभी श्रद्धा को न्याय चाहिए। जिस तरह लड़की को अभी काफ़ी केसेस महाराष्ट्र में तो बहुत अभी हो रहे हैं, इसका रेप हो गया, उसका रेप हो गया, तो हम लोग क्यों नहीं उनको सजा देते? हमारा गवर्नमेंट क्यों उनको इतना ये कर रहा है, इतना लाड़ प्यार क्यों कर रहे हैं? बाकी के देश में देखो कितने अच्छे अच्छे कायदे कड़क निकले हैं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप एक्शन लोगे, उसी टाइम एक्शन लोगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे, एटलीस्ट 3 साल के बच्चे के साथ रेप होता है, तो आप सोचो क्या चल रही है।
0: नहीं राजल जी, मैं आपको वादा दे सकता हूँ कि एनडीटीवी का इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का असर होगा, आप देखेंगे, क्योंकि सिस्टम पूरा हिल गया होगा। अभी जो लाइव जो आपकी आवाज़ जा रही है नेशनल टेलीविजन पर, सब लोग सुन रहे हैं, कोर्ट्स भी सुन रहे हैं, पुलिस भी सुन रहे हैं, तिहार जेल भी सुन रहे हैं। मेघना, दिस इज सच अ ट्रेजिक स्टोरी, लुक एट व्हाट राजल जी सेज, यू नो, श्रद्धाज फादर इज नो मोर, डाइड फाइटिंग दिस केस,
2: ब्रदर इज जस्ट। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके वजह से मेरा आवाज दुनिया में पहुंच रही है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपके वजह से, अगर पूरी मीडिया के वजह से अगर मेरी बच्ची को, हमारे बच्ची को न्याय मिल रहा है, तो अभी दे दो, बस हो गया। अभी 5 साल बहुत हो गए, जिस दिन फांसी मिलेगी ना, उस दिन मेरे भाई को और श्रद्धा को शांति मिलेगी। उसको छोड़ो मत, क्यों लाड़ प्यार कर रहे, वही समझ में रहे। उसको पढ़ाई देने की क्या इतना ज़रूरत क्या है, मुझे उसका ही जवाब नहीं मिल रहा है। अभी मैं दिल्ली आऊँगी, मैं गवर्नमेंट को भी पूछूंगी, अपने सरकार को पूछूंगी, मैं यहाँ पे सीएम को भी जाके मिलने वाली हूँ, हमारे देवेंद्र फडणवीस सर को भी जाके मिलने वाली हूँ कि ये क्या चल रहा है। आपने हमें कमिटमेंट किया था हम लोग फास्ट ट्रैक पे जाएंगे, उसको फांसी की शिक्षा देने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे। हमारे यहाँ पे मैंने अंदर मैडम से भी बात की, वहाँ उन्होंने भी मुझे प्रॉमिस किया कि हम लोग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जाके मिलेंगे, तो मैं जल्द से जल्द मिलके हमारी बच्ची के लिए न्याय मांगूंगी।
0: क्योंकि क्योंकि हमारे मन में भी है कि
2: यार जो चल रहा है ना,
0: का मतलब वो क्या है, अगर एक केस 4 साल के ऊपर भी चल सकता है,
2: मतलब क्या है,
0: तो मतलब ही क्या है। मेघना, माई क्वेश्चन टू यू, जस्ट लुक एट दिस फैमिली मेघना, you know, the Shraddha's father died fighting, obviously broken hearted, her little brother has just turned 18, they don't want to involve him, his entire life is going to be defined by the fight for justice.
3: It's, you know, Shiv, if this was just an isolated case, perhaps we could dismiss it, but there's such a disturbing pattern in our justice system where all the time this, you know, what ma'am is saying, the extraordinary compassion that's shown to men who are convicted of these heinous crimes, while the survivors and their families are spending years, livelihoods, lives are being lost, waiting for justice. Look at the Nirbhaya case, justice came after 8 years and the juvenile is out there roaming about, by the way, in the streets of Mumbai.
0: Yep.
3: Bilkis Banu case, remission they were out on, in the Hathras case, in Ram Rahim Singh's case out on parole, which we just discussed. What is the message that the judiciary is sending to women? I'm not understanding that, you know, we are not asking for some special treatment. We are asking for basic justice. And
0: Absolutely.
3: This is much bigger than Aftab Poonawala. Tomorrow there'll be another Shraddha. There's going to be another family that's waiting outside the courtrooms, another survivor wondering whether the system is going to protect her. Forget when. Is this system even going to protect her? What message are you sending? People are
0: Absolutely.
3: Watching. There is huge outrage that is building up now against the legal system, and something has got to give. We need justice fast and quick.
0: Absolutely. I'm going to thank all of you for the moment. This is only part one of our investigation. I promise you, I will be continuing to put NDTV's rigorous spotlight. Nobody would have even known about this leniency to Aftab had it not been for the NDTV news break on Saturday. And I'm glad we sent out our reporter to do even more. Thank you to all of you for being with me on this story. But just as an ender on this segment, let me just show you some more gems of judiciary. Just look at the things that the judiciary has done in the recent past. Multiple parole for murder, rape convict Gurmeet Ram Rahim of the Dera Sacha Sauda. anticipate